सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 31, तदनुसार 21 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके

0: तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है खेती की बातें। खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे मई महीने में गन्ना की बुआई और प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं संजीव मेहता।

किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम मई महीने में गन्ना की बुआई की चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आप मई माह में गन्ने की सीधी बुआई के बजाय सिंगल बेड विधि से नर्सरी की रोपाई करें, ये बेहतर होता है, क्योंकि अप्रैल के बाद पड़ने वाली तेज गर्मी के कारण सीधी बुआई से जमाव कम और लागत ज्यादा होती है। इस दौरान अगेती चोटी बेधक से बचाव के लिए सिंचाई और 8 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई आवश्यक होती है। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि मई माह में खाली खेतों में गन्ने की नर्सरी तैयार करके सिंगल बेड विधि से इसकी रोपाई करें, यह सर्वाधिक कारगर माना गया है। आप भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर गन्ने में हल्की सिंचाई करते रहें। वहीं उर्वरक प्रबंधन के लिए मई और जून में प्रति हेक्टेयर 5% यूरिया और क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें, यह फायदेमंद होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रत्येक सिंचाई के बाद 20 से 25 दिन के अंतराल पर हल्की निराई गुड़ाई भी जरूर करें। अगेती चोटी बेधक कीटों से नियंत्रण के लिए फोरतेरा या कोरोजन का प्रयोग करना उचित माना गया है। किसान भाइयों, अच्छी फसल के लिए हमें उन्नत किस्मों का भी चयन करना चाहिए। गन्ना की उन्नत किस्मों में CO0212, CO0622, CO11015 या CO C25 शामिल हैं। इसकी खेती से किसानों को बेहतर मुनाफा मिलती है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि मई की बुआई और रोपाई में नमी बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा अंकुरण खराब हो सकता है। किसान भाइयों, इस बात का भी ध्यान रखें कि गन्ने की फसल में कल्ले कम निकल रहे हों तो यूरिया का डोज दें। जैविक किसान प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत कर का प्रयोग करें, इससे गन्ने की जड़ें मजबूत होती है और कल्लों की संख्या भी बढ़ती है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में मई में कंसुआ का हमला बढ़ जाता है, जिससे गोफ सूखने लगती है। इसके बचाव के लिए आप नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं या ट्राइकोकार्ड का भी आप उपयोग करें। रासायनिक बचाव के लिए नमी में फरटेरा या कोराजन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की दो लाइनों के बीच सूखी पत्तियां बिछाएं, इससे मिट्टी में नमी रहेगी और खरपतवार भी कम होंगे। तो किसान भाइयों, एक बात और, गर्मी के तनाव से फसल को बचाने के लिए वेस्ट डिकम्पोस्ट या सागरिका का आप छिड़काव जरूर करें, इससे फसल हरी भरी रहती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई गन्ने की सफल खेती कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में भक्ति रचनाएं। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या

समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। 7:20 का हमारा समय होता है लोक गीतों का। 7:35 पर आप सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम पर बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। स्वास्थ्य चर्चा इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह के 7:50 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का हमारा समय होता है प्रादेशिक समाचार का जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर श्रोताओं आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे और 9:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरंजना में आज एक ही गायक के गाए गाने। 9:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:05 का समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और दोपहर 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और 3:30 पर हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं सुगम संगीत का। 3:45 पर आप सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 4:02 का समय होगा हमारा आज का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, ये प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने की प्रस्तुति होगी। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर आप सुन सकते हैं झारखंड के लोकगीत। 6:30 का समय होगा कृषि जगत का और संध्या 7 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। 7:10 पर यहीं से प्रसारित किया जाता है जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं खेल कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से प्रसारित किया जाता है रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा सम्पन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब आइए सुनवाते हैं आपके पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम।
1: आप और हम, आप और हम।
2: असमय बारिश की बूंद का धरा पर गिरना कभी कभी सुकूनदायक होता है, क्योंकि इससे बदलाव समझ में आता है। बदलाव मानव मन को नव ऊर्जा से भर देता है। एक रास्ता जीवन में उदासीनता लाती है, इसीलिए नए कपोलों का शाख पर आना संकेत है जीवन में नव विकास का। और इसी तरह हम अपने कार्यक्रम में भी नयापन लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहते हैं, ताकि आप कार्यक्रम का आनंद ले सकें और हमारा उद्देश्य साकार हो सके। कार्यक्रम में निखार लाने के साथ साथ स्वीकार कीजिए निशा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम को अपने खूबसूरत जवाबों से सजाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय। राय सर, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: जैसा कि हमारे पास आज भी कई मेल और खत आए हुए हैं, और उनमें से बिना समय गवाए हम मेल लेना चाहेंगे। सबसे पहले ये मेल आया हुआ है सुभाष कॉलोनी मानगो जमशेदपुर से रूपाली भट्टाचार्य जी का।
3: क्या लिखती है रूपाली जी?
2: लिखती है, आप सभी को मेरा नमस्कार।
3: को हमारी ओर से नमस्कार।
2: आगे इन्होंने जिक्र किया है, मैं आकाशवाणी के दोनों चैनलों को सुनती हूं और मुझे आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम काफी अच्छे लगते हैं। ऐसे तो मैं एक नियमित श्रोता हूं और आपके केंद्र से सारे कार्यक्रम सुनती हूं, लेकिन मुझे नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि समय के साथ समसामयिक बातों पर चर्चा इस कार्यक्रम की खूबसूरती होती है, जो कि कार्यक्रम में चार चांद लगाती है। बेशक कार्यक्रम तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जानकारी से भरपूर मधुर गीतों का समन्वय बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी प्रस्तुति के लिए आपका धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद बहन रूपाली भट्टाचार्य जी को। जो आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारे दोनों चैनलों को सुनती हैं। अब निमिषा जी, हमारे बहुत ऐसे श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, उत्साही श्रोता हैं, जिनके पत्र अथवा मेल से हमें ज्ञात होता है कि दोनों चैनलों का आनंद उठाते हैं। मतलब हमारा जो प्राइमरी चैनल है 102.4 MHz FM और जो हमारा विविध भारती सेवा है 100.8 MHz FM। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सूचना और शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का समावेश है। उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि हमारी ये जो सुधी श्रोता, इन्होंने अंत में जो बात लिखी है उसी से मैं आरंभ कर रहा हूँ कि कार्यक्रम, इन्होंने लिखा है कि सब अच्छे लगते हैं, लेकिन नमस्कार जमशेदपुर इन्हें ज्यादा इनके मन को भाता है। क्यों मन को भाता है? क्योंकि समसामयिक जानकारी के साथ साथ मधुर संगीत का भी समन्वय रहता है। तो वाकई अगर जानकारी को अगर मनोरंजक बना दिया जाए, मतलब निरसता को दूर कर दिया जाए, एक रस्ता का जो सिलसिला उसको तोड़ दिया जाए, तो जो फिर वो जो समन्वय होता है जो सूचना और मनोरंजन का, वो बड़ा ही मतलब सटीक होता है। ये हमारी इन बहन के पत्र से भी, मतलब मेल से भी, इनके विचारों से बात उजागर होता है। हम इनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे जो कार्यक्रमों का यूं ही आनंद लें, और इस कार्यक्रम के प्रति तो आप अपने विचार व्यक्त कर ही रही हैं। भविष्य में अगर आपको हमारे अन्य कार्यक्रमों के प्रति भी अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, ताकि हम किसी तरह की अगर बदलाव की गुंजाइश हो तो उस तरह को हम लोग कार्यक्रम बैठक में चर्चा करके आगामी जो हमारा जो कार्यक्रमों का जो छमाही जो फिक्स्ड पॉइंट चार्ट होता है उसमें उस तरह का कुछ बदलाव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रूपाली जी को।
2: रूपाली जी के इस मेल के बाद अब फिर से एक बार बारी आती है चिट्ठी की, और ये चिट्ठी आई हुई है ग्राम कुदादा से रंजीत भगत जी के।
3: अच्छा अच्छा, क्या लिखते हैं रंजीत जी?
2: रंजीत जी लिखते हैं, रेडियो के सभी साथियों को मेरा प्रणाम।
3: भाई रंजीत जी को हमारी ओर से भी नमस्कार जोहार।
2: आगे इन्होंने लिखा है, मैं आपका दोनों चैनल सुनता हूं और खुश होता हूं कि हमारे अपने इलाके में इतना बड़ा रेडियो स्टेशन है जिससे तरह तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, और हमारे केंद्र को कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग सुनते हैं। मैं आकाशवाणी के सभी बंधुओं का आभारी हूं जो इतनी अच्छी प्रस्तुति यहां से होती है। मुझे खेल जगत के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं राजीव तिवारी जी का कार्यक्रम अवश्य सुनता हूं। उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने गांव भी आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि हमारे यहां होने वाले छोटे मोटे खेलों को भी बढ़ावा मिले और हमारे गांव के लोग शहरों में भी खेलने जा सकें। अगर आप मेरी चिट्ठी को शामिल करेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद सर एवं मैडम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भाई रंजीत जी, एक तो आपको पत्र लिखने के लिए, और दूसरी बात आपने बहुत ही सुंदर और सार्थक बातें आपने साझा की हैं हमसे की, और ऐसा ज्ञात होता है कि आप तो हमारे जमशेदपुर के करीब इस कुदादा ग्राम में रह रहे हैं, लेकिन आप तकनीक के माध्यम से बहुत पूरा लाभान्वित है।
2: हाँ।
3: जैसा कि आजकल गांव-गांव में भी तकनीक का डिजिटल इंडिया का जो प्रभाव के चलते काफी प्रगति हो रही है। अब जैसे देखिए निमिषा जी, इन्होंने लिखा है कि हमारे केंद्र को लोग जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनते हैं, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि पूरब से लेके पश्चिम तक, यानी कच्छ से लेके कोहिमा तक भी लोग सुनते हैं। इसलिए क्योंकि अभी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है और अन्य केंद्रों का भी हो रहा है, तो आकाशवाणी के सभी केंद्र आजकल जो है लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कहीं भी सुने जा सकते हैं, और उससे आप आनंद ले रहे हैं, ये हमें जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे आपने लिखा है कि आपको खेल कार्यक्रमों में बड़ी रुचि है, और जो राजीव रंजन जो खेल कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं आपको अच्छा लगता है, निश्चित रूप से आप जो धन्यवाद दे रहे हैं। कार्यक्रम बैठक में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसके लिए वाकई उत्साह के पात्र हैं। और जहां तक आपने लिखा है कि आपके गांव में भी कुछ छोटी मोटी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, आप चाहते हैं कि वहां भी रेडियो पहुंचे और वहां ध्वनियांकन हो, तो हमारा आपसे आग्रह है भाई रंजीत जी कि ऐसी कुछ अगर महत्वपूर्ण कोई प्रतियोगिता होती है तो उसको आप एक इस तरह का सूचना जो है या इस तरह की कोई आग्रह कि हमारे इस प्रतियोगिता को कृपया कवरेज करवा दिया जाए, इस तरह का हमें मेल से या पत्र से अवश्य भेज दें ताकि हम इस तरह की व्यवस्था कर सकें, क्योंकि गांव में जो खेल कूद हो रहे हैं वाकई उसमें भी बहुत प्रतिभा होगी।
2: जी हाँ।
3: और जो है निश्चित रूप से अगर उसमें कोई अगर काफी स्तरीय कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई प्रतियोगिता हो रही है, तो कवरेज का हकदार है, लेकिन उसके लिए हमें समय पे सूचना और उस तरह से संबंधित एक आग्रह पत्र की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके आयोजक हैं उनसे।
2: हाँ।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भाई रंजीत जी।
2: रंजीत जी के इस पत्र के बाद अब बारी आती है फिर से एक मेल की, और ये मेल आया हुआ है सिद्धगोड़ा जमशेदपुर से मुकेश चौधरी जी का।
3: और क्या लिखते हैं भाई मुकेश जी?
2: मुकेश जी लिखते हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम।
3: भाई मुकेश जी को भी सब परिवार हमारी ओर से नमस्कार।
2: आगे इन्होंने जिक्र किया है, मैं आकाशवाणी का काफी पुराना श्रोता हूं और जमशेदपुर के दोनों चैनलों को परस्पर सुनता रहता हूं। कार्यक्रम में विविधता तो होती ही है, लेकिन इस विविधता में भी एक खूबसूरती है जो श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुझे उन दिनों की बात याद आती है जब हम फरमाइशी कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा करते थे, पोस्टकार्ड खरीदना और फरमाइश का गीत लिखना और इसके बाद इसे पोस्ट ऑफिस में डालकर आना। कितना कुछ आज बदल गया है, लोग फोन उठाते हैं, मेल करते हैं, बातें करते हैं और काम झटपट हो जाता है, लेकिन यादें जो है कभी पीछा नहीं छोड़ती। पुराने कार्यक्रम भी हमें यूं ही याद आते हैं, चाहे वे कार्यक्रम गाने पुराने हो या फिर हेलो डॉक्टर जैसे कार्यक्रम, सबकी खूबसूरती निराली थी। इन दिनों हेलो डॉक्टर कार्यक्रम पुनः आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में चर्म रोग विशेषज्ञ को अगर बुलवाया जाए तो अच्छा रहेगा, चूंकि बढ़ती गर्मी की वजह से स्किन संबंधी समस्या काफी हद तक देखी जा रही है। ऐसे कार्यक्रम का यदि आप प्रसारण करते हैं तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश चौधरी जी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं मेल के माध्यम से, आपने बड़ी ही खूबसूरत बातें लिखी हैं कि कार्यक्रमों में विविधता है, विविधता में भी खूबसूरती है। तो वाकई जो है अगर कार्यक्रम विविध जॉनर के नहीं हो तो फिर कैसे फिर रुचिप्रद होंगे
2: मिश्रा जी।
3: तो हमारे ओर से हमेशा हमारी टीम की ओर से प्रयास होता है कि कार्यक्रमों में सूचना और जो है शिक्षा तो हो ही, मतलब सूचनाप्रद शिक्षा हो, उत्प्रेरणा हो किसी सुधार के लिए, किसी अच्छी बात के लिए, और साथ ही साथ मनोरंजन तो है ही। आपने बड़ी एक नोस्टैल्जिक, जिसको एक उसके लिए शब्द है अंग्रेजी में कि नोस्टैल्जिया, पुराने बीते दिनों की बातों की आपने चर्चा की है, और आप काफी नोस्टैल्जिक होते उस बात को लिख रहे हैं कि पहले लोग पोस्ट कार्ड खरीदते थे, फरमाइशी गीतों के लिए उस पे लिखते थे, फिर पोस्ट करते थे, लेकिन आजकल फोन उठा देना हो गया है या एक माउस के क्लिक से या मोबाइल में ही मेल कर देते हैं। ये सब तकनीक का कमाल है, तकनीक का ही तो कमाल है कि आजकल किसी भी केंद्र को विश्व में कहीं भी सुना जा सकता है लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निमिषा जी बातचीत कर रहे थे, बदलाव में ही जो है गतिशीलता है, गतिशीलता ही जीवन है और वही समय की मांग है। लेकिन वाकई बड़ी खूबसूरत उसमें यादें हुआ करती थी और उन यादों को आप याद कर रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कुछ पुराने कार्यक्रमों की चर्चा की है और फिर जैसे हेलो डॉक्टर को आपने पुराना भी बताया, फिर आपने बताया कि पुनः आरंभ हुआ है, तो वाकई इस कार्यक्रम को हम लोगों ने पिछले दिनों से फिर से रीस्टार्ट किया है। और जहां तक आपका आग्रह है कि चर्म रोग विशेषज्ञ को बुलाया जाए, त्वचा रोग वाले को, तो हम हमेशा हमारा प्रयास होता है कि विभिन्न जॉनर के विभिन्न स्पेशलिटीज के डॉक्टर इस कार्यक्रम में आए और जो आधा घंटा जो फोन आए उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, रखे, तो हम लोग कई डॉक्टरों के संपर्क में हमारी टीम रहती है, तो निश्चित रूप से हम लोग किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ का भी हम लोग उसमें आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन निमिषा जी, जो पहले भी हम लोग बता चुके हैं, हमारी जो एक उसमें जो हमारी जिसको कहा जाए विवशता है, कॉन्स्ट्रेंट है, वो ये है कि उस समय डॉक्टर जो हमारे जो डॉक्टर साथी होते हैं, डॉक्टर जो विशेषज्ञ होते हैं, उनका सायं काल के जो उनका जो क्लिनिक का टाइम होता है वो पिक टाइम है।
2: जी हाँ।
3: तो उस समय ऐसे ही डॉक्टर आ पाते हैं जो उतना समय निकाल पाते हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: तो ऐसे डॉक्टर निश्चित रूप से हम चिकित्सकों के संपर्क में है और हम लोग हमेशा इनके सुझाव को ध्यान में रखेंगे और किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को भी इसी गर्मी में आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश चौधरी जी, आप यूं ही कार्यक्रमों से अपना स्नेह बनाए रहें, चूंकि आप काफी पुराने श्रोता हैं, तो आपसे भी आग्रह है कि आप सुनते रहें और कुछ कुछ अंतराल पे यूं ही अपने काफी उत्साहजनक विचारों से हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद
2: मुकेश चौधरी जी के इस मेल के साथ ही हमें कार्यक्रम से विदा लेना होगा, चूंकि हमारा समय हो चला है। तो विदा लेने से पहले हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का पता बता दें।
3: बिल्कुल।
2: अगर हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं तो हमारा पता है कार्यक्रम आप और हम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जमशेदपुर, पिन है 83101। और अगर आप मेल करते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है airjsrcbs@gmail.com। पत्र लिखें, मेल करें।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब सुनवा रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी गीत हृदयानंद तिवारी और साथियों से।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत।

लोकगीत का कार्यक्रम अभी आज आप सुन रहे थे श्रोताओं। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थे हृदयानंद तिवारी। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जमशेदपुर से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:35 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज सुनिए आधुनिक गान। कलाकार हैं श्रावंती मजूमदार।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जमशेदपुर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरांजलि। आज इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक गान आप सुन रहे हैं। आज की कलाकार हैं श्रावंती मजूमदार।

आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जमशेदपुर। श्रोताओं, सुबह के 7:50 होने वाले हैं। समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। इसके तहत आज आप सुनेंगे काला मोतिया कारण और निदान विषय पर डॉक्टर श्वेता देव से भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे काला मोतिया के बारे में। ये काला मोतिया है क्या, किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं हमारी आंखों पर इसका, और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं। इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता देव। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि काला मोतिया वास्तव में हम कहते किसे हैं।
1: काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की रोशनी मरीज की धीरे धीरे करीब साल, दो साल या दस साल भी लग सकते हैं, उसमें ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन हो जाता है।
0: तो ये कैसे लोगों को पता चले कि वो काला मोतिया के शिकार हो रहे हैं और किस तरह का आंखों में असर दिखने लगता है, कब वो जाए डॉक्टर के पास?
1: जी, काला मोतिया या ग्लोकोमा कह ले, इसमें ऐसा है कि पेशेंट खुद ही अवेयर नहीं हो पाता। जब मरीज हमारे पास रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, आंख का चेकअप के लिए, तब हम उनको बताते हैं कि आपका आंख ग्लोकोमा सस्पेक्टेड है, मतलब संभावना है कि आपको काला मोतिया हो सकता है फ्यूचर में। काला मोतिया को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस से ही पता चल सकता है, पेशेंट भी अवेयर नहीं हो पाते हैं।
0: तो क्या ये किसी खास उम्र में शुरू होता है या फिर बच्चों में या बड़ों में, किसी में भी हो सकता है?
1: बच्चों में मिलता है, लेकिन वो बाय बर्थ होता है।
0: अच्छा।
1: वो जन्मजात होता है कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा, लेकिन अगर कॉमन बात की जाए तो ये 40 इयर्स से देखा गया है।
0: तो किस तरह की देखभाल हमें आंखों की करनी चाहिए या पूर्व सावधानियां हम क्या बरते ताकि हम ग्लोकोमा से बचे रहें?
1: देखभाल तो तभी हो पाएगी जब उनको पता चलेगा कि हाँ, उनको ग्लोकोमा है। तो इसमें जो मेडिसिन होता है वो रेगुलर डालना पड़ता है ताकि उनका आंख बचे, क्योंकि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आंखों की जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व, वो धीरे धीरे इतनी कमजोर कर देती है जिसके वजह से रोशनी चली जाती है मरीजों की। ग्लोकोमा कुछ कुछ फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे ग्लोकोमा फैमिली हिस्ट्री पे बहुत डिपेंड करता है। अगर घर में ग्लोकोमा का पेशेंट पहले से है तो उसके दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आई चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली हिस्ट्री पे बहुत डिपेंड करता है। दूसरी बात, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वरना उनको ग्लोकोमा हो सकता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, ये सारी जो चीजें हैं, इसको अगर प्रिकॉशन के तौर पे लिया जाए तो ग्लोकोमा से बचा जा सकता है।
0: अगर मान लीजिए कोई काला मोतिया का शिकार है तो क्या ऑपरेशन उसका इलाज है या कि दवाओं से भी ये ठीक हो सकता है?
1: मोर देन 80% ऐसा है कि एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स की वजह से ये कंट्रोल हो जाता है। इन केस अगर मेडिकेशन से या आई ड्रॉप से कंट्रोल नहीं होता तो फिर सर्जरीज की जाती है। सर्जरी के दौरान इसमें आंसू निकलने के लिए एक्वस ह्यूमर जो बनता है, तो उसका निकलने का एक रास्ता बना दिया जाता है जो हमेशा कंट्रोल्ड वे में फ्लो करेगा, और जिसके वजह से जो इंट्राओकुलर प्रेशर, आंखों का जो प्रेशर होता है, उसको बढ़ने नहीं देगा। वो एक टारगेट आईओपी लेके ही रहेगा, जिसके वजह से आंख हमारी या मरीजों की बच जाएगी।
0: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सावधानियां वो बरतें ताकि वो ग्लूकोमा से बचे रहें, काला मोतिया से बचे रहें?
1: मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो जो आदमी 40 या 40 प्लस हैं, उनको रेगुलर अपना आंख दिखाना चाहिए, ताकि अगर वो सस्पेक्टेड है, ग्लोकोमा सस्पेक्टेड है, तो हम उनको अवेयर कर सके कि आपकी आंख धीरे धीरे जा सकती है, प्रिकॉशन लिया जा सकता है।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है। समय रहते अगर हम इसका इलाज कराएं तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है और हम अपनी आंखों का अच्छा ख्याल रख सकते हैं और अपनी आंखों से पूरी दुनिया को अच्छी तरह से देख सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा के तहत श्रोताओं, आप सुन रहे थे काला मोतिया कारण और निदान विषय पर डॉक्टर श्वेता देव की भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार, और अब ये कार्यक्रम हुआ है संपन्न।

0: आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए श्रोताओं, आज की इस सभा में कुछ मुख्य कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:45 पर, और एक बार फिर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरंजना 9:05 पर। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ख्याल गायन। कलाकार होंगे पंडित डीवी पोल्युस्कर। सुबह 10:20 पर एक बार फिर आपको लिए चलेंगे फिल्म संगीत की दुनिया में। नमस्कार जमशेदपुर, ये कार्यक्रम होगा सुबह 11:05 पर, और 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भावगीत। बारह 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत बुद्ध्या आदित्य मुखर्जी से आज आप सुनेंगे राग शुद्ध सारंग में सितार वादन। ये थी कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में राष्ट्रीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, और 8:30 पर आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार। बारी बारी से ये राष्ट्रीय प्रसारण आपके लिए सुनाए जाएंगे, कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: करना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता,

0: आकाशवाणी न्यूज कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने किया था कि वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान के सारंडा जंगलों में सक्रिय नक्सलियों के एक बड़े समूह ने हथियार डाल दिए हैं। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: झारखंड के नक्सल इतिहास में आज सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। शीर्ष नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े नक्सलियों के एक बड़े समूह ने सुरक्षा बलों के सामने घने जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े इनामी और महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने साथ भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। आज सुबह रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इनका विधिवत आत्मसमर्पण कराया जाएगा। इस सामूहिक सरेंडर से सारंडा इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन की कमर पूरी तरह टूट गई है, जिससे राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने और रेट रिवीजन के लिए जानबूझकर काम लटकाने वालों के जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने गुणवत्ता से समझौता न करने और विधायकों के शिकायतों पर तुरंत जमीनी कार्रवाई का निर्देश दिया।
2: ग्रामीण विकास में मेनली जिन चीजों की समीक्षा की गई वो मनरेगा संबंधित, अब वो आवास को लेकर के है, आवास की अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, जेएसएलपीएस की गतिविधियां और वाटरशेड को लेकर के यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सभी कामों में हम लोगों ने प्राथमिकता इस बात को देने को कहा है कि जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
0: रांची में आज और कल कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन आज राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जबकि कल समापन सत्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कंपनियां सीएसआर राशि का उपयोग फैक्ट्री और माइंस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए करें। उन्होंने इसकी निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाने की भी घोषणा की।
3: जो सीएसआर का पैसा दूसरे जगह यूज करता है, गर्दा हम खाते हैं, संकट हम झेलते हैं, जमीन हमारी जाता है और इसका नियंत्रण जो है कोई और करता है और इस पैसा को दूसरे देश में, दूसरे राज्य में खर्चा किया जाता है, लेकिन हमको राज्य के हित में भी देखना है और उसको कैसे बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा कैसे हम उस इलाके में खर्चा कर सकते हैं जहाँ फैक्ट्री से है, जहाँ उद्योग है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज जो है पहला मीटिंग किए हैं।
0: बैठक में यूनिसेफ, टाटा फाउंडेशन और सीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा वन आधारित और सर्कुलर इकोनॉमी के अवसरों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की सोच के अनुरूप है। इस अवसर पर प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी और GIIDCO के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से आगामी 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपने बूथ पर जाकर नाम की जाँच कर सकेंगे। उधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और जिला प्रशासन के सहयोग से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक विशेष मतदाता और आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और आम लोगों को चुनावी व पहचान दस्तावेजों से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था।
4: तैयार का मैपिंग हो रहा है, वोटर आईडी और आधार जो है नए जिसको बनाना है नए बन रहे हैं, अगर कुछ करेक्शंस है तो करेक्शंस हो रहे हैं। 2 साल बाद आज हम लोग ने ये कैंप लगाया है और हमारे मेंबर्स की और लोगों की डिमांड थी कि वोटर आईडी का करेक्शन कराना है, आधार में बहुत से करेक्शंस है और खासकर मैपिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जो पहले किसी कंस्टिट्यूएंसी में थे अभी चेंज हो गया है उनका कंस्टिट्यूएंसी, तो अभी SIR मैपिंग कराना मस्ट हो गया है।
0: सीबीआई की धनबाद टीम ने GCST के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को

सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है। हजारीबाग पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित टीपीसी उग्रवादी दुर्गा बेदिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि 9 मामलों में फरार चल रहे इस उग्रवादी को गिद्दी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में कोर्रा थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर अवैध देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां कल पलामू 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। रांची समेत 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आज 5 जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज जमशेदपुर एफसी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओडिशा एफसी के खिलाफ अपना अंतिम लीग मुकाबला खेलेगी। लीग टाइटल की दौड़ में बने रहने के लिए जमशेदपुर एफसी को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। टीम फिलहाल 12 मैचों में 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के हवाले से लिखा है, राज्य में 4-5 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज सबसे बड़ा सरेंडर, 25 नक्सली डालेंगे हथियार। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में। दैनिक जागरण लिखता है, 7 ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़ेंगे 20 अतिरिक्त कोच, 2 और कतार में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और XLRI जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए MOU, नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार, आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: हम
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं, हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे सफर में स्वागत है आपका।

श्रोताओं, सुबह का वक्त कितना जादुई होता है। मन करता है कि सारी बंदिशों को तोड़ दें, इस खूबसूरत आसमान को बाहें फैलाकर गले लगा लें और बस आज़ाद होकर कहीं उड़ जाएं। कुछ ऐसा ही आज़ाद ख्याल, ऐसा ही उलझन, ऐसा ही अल्हड़पन और ऐसी ही बेफिक्री समेटे है हमारा ये गाना।

दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आता है जो अपनी सादगी और मोहब्बत से हमारी दुनिया ही बदल देता है, दिल को सुकून से भर देता है, मानो सचमुच कोई फरिश्ता आसमान से उतर आया है।

0: कहाँ है
1: कहाँ प्यार है तुमसे
2: आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपने सुना फिल्म चोरी चोरी और एन इवनिंग इन पेरिस का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशन था शंकर जयकिशन का।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों की इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने की के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनः मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और कई खबरों के बाद 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द

नियुक्त कर दिया था। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार है। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरंजना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
3: दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
5: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए, और गरीब और कमजोर देशों को पैसा

0: तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम गेंग 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं सुरंजना लेकर। आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे एक ही गायक को। दोस्तों, आज हम उस आवाज को सुनवाने जा रहे हैं जिसने 70 और 80 के दशक में जब दस्तक दी तो सादगी का एक नया पैमाना मिल गया था। सुरों के उस मसीहा, उस उस्ताद का नाम है सुरेश वाडकर।

जिंदगी में जब अकेलापन घेर लेता है तो सुरेश जी की आवाज़ एक दोस्त की तरह आकर हमारा हाथ थाम लेती है। फिल्म गमन का यह गाना आज भी हर उस इंसान की दास्ता है जो इस भागती दौड़ती दुनिया में खुद को अकेला पाता है।

आज के कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं, आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं प्रेम रोग, ईमानदार और गमन। गीतकार थे संतोष आनंद और शहरयार। संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और जयदेव का। सुरेश वाडकर के गाए इस गाने के साथ ही हमारा आज का सुरंजना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं
2: कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं राग तोड़ी पर आधारित ये ख्याल गायन पंडित DV पलुस्कर से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी पर आधारित ख्याल गायन पंडित डीवी पलुस्कर से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन

होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक, VCK, IUML, CPI, CPIM के 2-2 विधायक और SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: per sitting. Chief Minister Himanta Biswa Sarma yesterday said that the Uniform Civil Code Bill will be introduced and passed during the ongoing Assembly session. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanath Melur MLA will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest, so the U.S. look forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while the Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की, कहा पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा वे इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर्ज से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। सुश्री मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहाँ भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया।
4: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती गति को दर्शाती है। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर कल आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास है। श्री पर्वतनेनी ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान सैन्य बलों द्वारा की गई सीमा पार सशस्त्र हिंसा के कारण 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से अधिकांश हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुई है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरान के बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर नए सैन्य हमले टालकर बातचीत का मौका देने की बात कही थी लेकिन समुद्र में कार्रवाई जारी है। अमरीका का कहना है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 2 मालवाहक जहाजों को कब्जे में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अंतिम कार्यवाही पूरी हो गई है। अंतिम सुनवाई में रवांडा नरसंहार के कथित वित्त पोषक फेलिसियन काबुगा से जुड़ी कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। काबुगा का शनिवार को निधन हो गया था। दोनों न्यायाधिकरणों ने अत्याचार और नरसंहार से जुड़े 155 लोगों को दोषी ठहराया। इन अदालतों ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों तथा मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा लिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की। कहा, पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वे इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
7: हेलो डॉक्टर,
8: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
7: हेलो डॉक्टर,
8: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
7: हेलो डॉक्टर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर गीतों भरे सफर में। स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज, सुनवाते हैं ये गाना फिल्म होटल से। आवाज़ें मनहर उदास और आशा भोसले की है। इंदिवर ने इस गीत को रचा है, संगीत उषा खन्ना का है।

जो जीता वही सिकंदर। आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे जतिन ललित। आवाजें थी साधना सरगम और उदित नारायण की। कार्यक्रम का अगला गाना सुनवाते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में फिल्म हम तुम से। रचनाकार हैं प्रशून जोशी और संगीत जतिन ललित का है।

अलका याग्निक और सान के गाए फिल्म कल हो ना हो के इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग

स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर चेन्नई के लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945, जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: Hollywood.
1: कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनिमा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, क्या आप चाय का कप लिए हाथों में सुबह का अखबार पढ़ते हैं? अगर हाँ तो हर घर की यही कहानी है। सुबह की चाय के बिना हम में से कईयों की नींद नहीं खुलती है ना, चैन नहीं मिलता हमें एक कप चाय के बगैर। चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, चाय की तलब कभी भी कहीं भी हो सकती है। चाय दिल की पुकार है, हमारा कहिए तो जनसिद्ध अधिकार है। श्रोताओं, आज है इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हर साल 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस।

ये दिन दुनिया भर में चाय के महत्व, चाय किसानों और मजदूरों के योगदान और चाय उद्योग से जुड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दी थी। चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि कई देशों की संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है चाय। भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या और बांग्लादेश जैसे देशों में लाखों लोगों की आजीविका चाय उद्योग पर निर्भर करती है। भारत में चाय का विशेष महत्व है। सुबह की शुरुआत से लेकर मेहमान नवाजी तक चाय भारतीय जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम और दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि चाय उद्योग में काम करने वाले किसानों और मजदूरों को उचित मजदूरी, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और सम्मान मिलना चाहिए। इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूल खेती और टिकाऊ उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। चाय के कुछ प्रमुख लाभ भी हैं। शरीर को ताजगी और ऊर्जा मिलती है चाय पीने से। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है चाय। तनाव कम करने में मददगार होती है चाय। साथ ही पाचन में सहायक होती है ये चाय, एक प्याला चाय। चाय दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है। अलग अलग देशों में से अलग अलग शैली में पिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि एक साधारण कप चाय के पीछे लाखों लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। इसलिए हमें चाय का सम्मान करना चाहिए और चाय किसानों के अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर हमने आपसे ढेर सारी बातें की और मैंने आपको एक प्याली चाय भी पिला दिया गीत के माध्यम से। आप सुन रहे थे बनफुल फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, आज है संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस। प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैलियों के प्रति सम्मान, समझ और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। ये दिन हमें ये संदेश देता है कि सांस्कृतिक विविधता मानव समाज की शक्ति है, जो शांति, विकास और आपसी संवाद को मजबूत बनाती है। आज के वैश्विक युग में अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे में सहिष्णुता, भाईचारा और परस्पर सम्मान बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सांस्कृतिक विविधता केवल कला, संगीत, नृत्य और भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों के विचारों, मूल्यों और जीवन जीने के तरीकों में भी दिखाई देती है। श्रोताओं, ये दिवस हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने के साथ साथ अन्य संस्कृतियों को समझने और अपनाने की प्रेरणा देता है। संवाद और विकास तभी संभव है जब समाज में सभी संस्कृतियों को समान सम्मान मिले, एक सा सम्मान मिले। सांस्कृतिक विविधता हमें एकता में अनेकता का महत्व सिखाती है और विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित करने में

परदेसी बाबू, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं, आनंद राज आनंद की आवाज़ में। गीत और संगीत था आनंद राज आनंद की।

श्रोताओं, आज है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। भारत में हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। इस दिन का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ जागरूक करना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना और युवाओं को देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रेरित करना है। ये दिन विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई थी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी पर हमला किया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना, लोगों को ये समझाना कि आतंकवाद सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि मानवता के लिए बड़ा खतरा है। युवाओं को हिंसा और कट्टरता से दूर रखकर शांति, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना है आज के दिन का उद्देश्य। धर्म, शांति और भाषा से ऊपर उठकर देश की एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है आज के दिन का उद्देश्य। आतंकवाद निर्दोष लोगों की जान लेता है, इसलिए मानवता और सह अस्तित्व का संदेश देना इस दिन का है प्रमुख उद्देश्य। आतंकवाद किसी एक व्यक्ति या देश को नहीं बल्कि पूरी मानवता को प्रभावित करता है। इसके कारण लोगों में भय और असुरक्षा फैलती है, आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित होती है, निर्दोष लोगों की जान जाती है और समाज में नफरत और विभाजन बढ़ता है। इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से गलत विचार तेजी से फैल सकते हैं, फैल रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं को सही जानकारी, शिक्षा और नैतिक मूल्यों से जुड़ना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें याद दिलाता है कि शांति, संवाद और एकता ही किसी भी समस्या का स्थायी समाधान है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें यह संदेश देता है कि हिंसा और आतंकवाद कभी भी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो शांति, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे और आतंकवाद जैसी बुराइयों का मिलकर विरोध करें।

0: सरफरोश, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा था इसरार अंसारी ने और आवाजी थी रूप कुमार राठौर और साथियों की।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं अनिमा। इस समय दिन के 11:36 हुए हैं।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई आपसे करती हैं और भी ढेर सारी बातचीत। श्रोताओं, डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, सोशल मीडिया मनुष्य की मानसिक संरचना, सामाजिक संबंधों और लोकतांत्रिक विवेक पर गहरा दबाव डालने लगा है इन दिनों। इसका सबसे पहला नुकसान तो हमारे ध्यान और एकाग्रता पर ही होता है। लगातार नोटिफिकेशन, रील्स, तेजी से बदलती खबरें और अंतहीन स्क्रॉलिंग ने मनुष्य के धैर्य को कम किया है। गहराई से पढ़ने, किसी विचार पर लंबे समय तक सोचने और जटिल विषयों को समझने की क्षमता कमजोर पड़ रही है। सूचनाएं इतनी अधिक है कि मस्तिष्क उन्हें प्रोसेस ही नहीं कर पाता। हम जानकारी से घिरे होने के बावजूद समझ से दूर हो रहे हैं। इसीलिए आज से संकल्प करें कि जानकारी से भरपूर होने के साथ ही गैर जरूरी सूचनाओं से दूरी भी बनाएंगे।

प्रीतम की संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे लव आजकल फिल्म का गाना। मोहित चौहान की आवाज़ में बोल इरशाद कामिल के थे।

श्रोताओं, अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन और नींद की समस्या या फिर अन्य कोई मानसिक चुनौती का सामना कर रहे हैं तो मुफ्त परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय टेलीमानस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-1-6 या 1-800-89-1-4-4-1-6 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी परामर्श दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपकी मुफ्त काउंसलिंग भी की जाएगी। जैसे आप इस हेल्पलाइन पर फोन करेंगे तो आपको भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। फिर आप जिस राज्य में रहते हैं उसके नाम का चयन करना होगा आपको। दो स्टेप के बाद आप हेल्पलाइन सेंटर से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। इसके बाद मानसिक रोग विशेषज्ञ आपका इलाज और काउंसलिंग शुरू कर देंगे। तो अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 1-4-4-1-6 और 1-800-089-1-4-4-1-6।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आप सुन रहे थे थ्री इडियट्स फिल्म का ये गाना। सूरज जगन, सरमन जोशी और साथियों की आवाज़ों में, गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत से सजाया था शांतनु मित्रा ने।

श्रोताओं, आज है निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का जन्मदिन। वे खास तौर पर यशराज फिल्म्स के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। ये कंपनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। आदित्य चोपड़ा का जन्म 21 मई 1971 को हुआ था। वे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के बेटे हैं। बचपन से ही उनका माहौल फिल्मों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्म निर्माण की बारियां क्या सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। शुरुआत में उन्होंने फिल्मों के स्क्रिप्ट, एडिटिंग और निर्देशन की तकनीक को करीब से समझा। उनकी सबसे बड़ी शुरुआती सफलता 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। इसमें शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिकाओं में थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने भारतीय रोमांटिक फिल्मों का नया दौर शुरू किया। विदेशों में बसे भारतीयों को फिल्मों से जोड़ा। मुंबई के सिनेमाघर में कई वर्षों तक लगातार चलने वाली फिल्मों में शामिल रही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भारतीय रोमांटिक फिल्मों का नया दौर शुरू किया। इस फिल्म ने आदित्य चोपड़ा को बेहतरीन निर्देशक के रूप में स्थापित किया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने आदित्य चोपड़ा ने कई सफल फिल्मों को लिखा, प्रोड्यूस किया और निर्देशित भी किया। इन फिल्मों में मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी, बेफिक्र, वीर जारा, धूम, चक दे इंडिया, वार और पठान शामिल हैं। अपने पिता के बाद आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म को आधुनिक रूप दिया। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको सुनवाते हैं आदित्य चोपड़ा निर्देशित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गाना।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं। कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत से सजाया था जतन ललित ने। चलते चलते मौसम की जानकारी आपको दे दें, आज दिन भर उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। तापमान में ज़्यादा बदलाव की संभावना बिल्कुल भी नहीं है इन दिनों। आज के अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

0: श्रोता कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे दड़ी पार फिल्म का ये प्यारा सा गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार थे समीर, संगीतकार जतन नदीम श्रवण। और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार
1: नमस्कार जमशेदपुर।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और समाचारों के बाद दिन के 12:05 का समय होगा कार्यक्रम शीर्षक गीत का। तो अब है आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं और सुनते हैं समाचार के बाद। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और

0: एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हैं ये वैसा ही आपका बिंब आपको दिखाता है। वक्त के साथ बदलते चेहरों से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है आईना। आईना वही दिखाता है जो है, चाहे वो आपका चेहरा हो या फिर वो बदलाव जो वक्त के साथ साथ आता है। ये आईना ही है जो हर स्थिति में हमें अपने आप से प्यार करना सिखाता है। छूटे हुए पल और छिपे हुए एहसास भी आईने में साफ साफ नजर आते हैं।

संवरती है वो आईना देखकर, संवरती है वो आईना देखकर, संवर जाए तो आईना उसे देखता है।

श्रोताओं, अक्सर आपने लोगों को आईने से बात करते देखा होगा, है ना? कुछ लोग ये बात तब करते हैं जब उन्हें तन्हाई महसूस होती है। कुछ लोग इसलिए बात करते हैं जिससे कि उनका मन हल्का हो जाए। आईना और दिल का एक ही फसाना है, अंजाम दोनों का टूटकर बिखर जाना है।

श्रोताओं, शीर्षक गीत के आज के इस कार्यक्रम में आज का हमारा शीर्षक था आईना। आईना शीर्षक गाने आपको जरूर पसंद आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी तमन्ना, मोहब्बत, कबीर सिंह और माँ। इन गीतों के लिए आवाज़ें थी कुमार सानू, विनोद राठौर, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। गीतकार थे इंदीवर, समीर, इरशाद कामिल और हसरत जयपुरी। संगीत से सजाया था अनु मलिक, नदीम श्रवण और अमाल मलिक ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन, राग है

आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपने रांची केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। उसके बाद दिन के 1:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं और सुनते हैं समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। आंगनबाड़ी भवन निर्माण, शत प्रतिशत टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। और रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी। उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज लाल आतंक के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। रांची पुलिस मुख्यालय में आज एक साथ रिकॉर्ड 27 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 25 प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और 2 जेजेएमपी के सदस्य हैं। सरेंडर करने वाले 8 शीर्ष नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनके खिलाफ 426 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उग्रवादियों ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष 5 इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस भी सौंपे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये भटके युवा मुख्य धारा में लौटे हैं।
1: आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत दिया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे।
0: कृषि विभाग रांची की ओर से नगड़ी प्रखंड में जिला स्तरीय किसान मेला सह कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और सरकारी अनुदान योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि एवं उद्योग विभाग के सभापति आदिल अजीम ने शिरकत की। रांची में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने, पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल और अपार आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए। रांची में जिला जज एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए गए। सीबीआई की धनबाद टीम ने सीजीएसटी के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है।
2: जीएसटी के 2 पदाधिकारी नील करके जांच के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। इस सीबीआई के नंबर पर हम भी बात किए, उसके बाद रिपोर्ट को लिखवाए, उसके बाद जो भी हुआ, रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था, तो आज हमने 50,000 रुपया दिए, जो आज पकड़ा गया है।
0: झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने उम्मीदवारों की मांग और विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जैक द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अब अभ्यर्थी जेटेट के लिए आगामी 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कुल 30 एजेंडों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें विश्वविद्यालय में शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खोलने का फैसला शामिल है। भारतीय सेना ने 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना यानी TES 56 कोर्स के लिए योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं कक्षा और JEE मेंस 2026 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर की जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 15 मई को हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि SSP के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और CCTV फुटेज के आधार पर छापेमारी कर इन आरोपियों को दबोचा।
3: तो ये 6 लोगों की कुल मिलाकर इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 4 अवैध देसी पिस्टल है, 5 जिंदा गोलियां हैं, 1 खोखा, 3 खाली मैगजीन, जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी उस घटना में उसको भी बरामद कर लिया गया है और 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 136 अंक बढ़कर 75,454 पर और निफ्टी 72 अंक बढ़कर 23,731 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कोडरमा जिला इन दिनों भीषण लू और तपिश की चपेट में है। जिले में सुबह 10 बजते ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण गर्मी के कारण स्थानीय नदी और जलाशयों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर राजीव कांत पांडे ने श्रोताओं से अपील की है कि वे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें।
4: कि अगर जरूरी ना हो तो आप भारी धूप में ना जाएं। यदि आपको किसी कारण से निकलना ही होता है तो सारा प्रोटेक्शन ले, जैसे कि कोई गमछा बांध के रखे, हो सके तो जो ढके हुए वाहन हैं उनका प्रयोग, बाइक और टू व्हीलर हो सके तो अवॉइड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, बार बार पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट साथ में रखें, अपने यूरिन के कलर को वॉच करते रहें।
0: राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव SK पांडे ने बताया कि इस महाकुंभ में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, शत प्रतिशत टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी, उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ, 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
5: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, आज है निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का जन्मदिन। यशराज फिल्म्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य चोपड़ा। उनका जन्म 21 मई 1971 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का निर्देशन किया था। वे दिग्गज फिल्मकार स्वर्गीय यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा के बड़े बेटे हैं। 1995 में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से निर्देशन की शुरुआत की उन्होंने। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक थी। उनके अन्य निर्देशित फिल्में हैं मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्र। एक निर्माता के रूप में उन्होंने वीर जारा, धूम, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पर्दे पर उतारा। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदित्य चोपड़ा निर्देशित मोहब्बती फिल्म के इस गाने के साथ।

आप सुन रहे थे मोहब्बते फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, उदित नारायण, उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भटावडेकर और प्रीता मजूमदार की आवाज़ों में बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गाना आदित्य चोपड़ा अभिनीत वीर ज़ारा फिल्म से, आदित्य चोपड़ा निर्देशित वीर ज़ारा फिल्म से हमने दिया है, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में, उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर। आइए सुनते हैं।

आदित्य चोपड़ा निर्मित वीर जारा फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था। आवाज उदित नारायण की थी। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए आदित्य चोपड़ा निर्देशित रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गाना।

0: रब ने बना दी जोड़ी, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं। सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत लिखा था जयदीप सैनी ने और संगीत से सजाया था सलीम सुलेमान ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम में वक्त है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।

0: Akashvani at 90.
1: जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं, उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं, 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्मों के गाने। आज है आदित्य चोपड़ा का जन्मदिन। आदित्य चोपड़ा का जन्म 21 मई 1971 को मुंबई में हुआ। फिल्मों के माहौल में पले बड़े आदित्य ने महज 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया था। उन्होंने चांदनी और डर जैसी फिल्मों में काम किया। एक निर्देशक के अलावा आदित्य चोपड़ा एक दूरदर्शी निर्माता हैं। उन्होंने धूम सीरीज, टाइगर फ्रेंचाइजी और वार जैसी भव्य एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों के जरिए यशराज फिल्म्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आइए सुनते हैं टाइगर जिंदा है इसी फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा ये गाना। टाइगर जिंदा है फिल्म से आतिफ असलम की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गाना श्रोताओं लीजिए सुनिए, वार फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। संगीत रचना विशाल और शेखर की है, गीतकार हैं कुमार।

कार्यक्रम के आखिर में श्रोता सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में जयदीप सैनी का लिखा ये गाना सलीम सुलेमान के तर्ज पर। फिल्म का नाम था चक दे इंडिया और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं दिन के 2:30 पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे पहले अंग्रेजी उसके बाद हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange color warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति सरकार ने उपभोक्ताओं पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से अब समाचार विस्तार से भारत और इटली ने व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है जिसमें व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय

0: मेहता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan, with its long time,
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा

0: शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली

0: हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे श्रोताओं बस थोड़ी देर में।

0: Akashwadi at 90.
1: आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर हम हाजिर है श्रोताओं, अपने रेडियो सेट के और नजदीक आइए और अगले 25 मिनट तक मनोरंजन के इस दिलचस्प सफर में शामिल हो जाइए। एफएम के रेडियो तरंगों के साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार, बल्कि प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, जब मन में कोई सच्चा साथी समा जाए तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिल्म कहो ना प्यार है का गीत आपने सुना लकी अली की आवाज़ में। गीत लिखा था इब्राहिम अश्क ने और संगीत से सजाया था राजेश जोशी ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज़ों में नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

दिल है तो तरंगे हैं, धड़कने हैं, पर इन सब पर किसका बस चलता है। बिन सजना के सब कुछ फीका फीका सा लगता है। कुछ ऐसी ही बातें हैं अगले गीत में, लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे थे सैनिक फिल्म का गाना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। बोल समीर के थे, संगीत बद किया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं लीजिए सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गाना, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बादल। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो, बातें उसकी, दूर रहकर भी सदा रहती है मुझको थामे हुए बाहें उसकी।

0: सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में बादल फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आपने ट्यून किया है 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 2:55 बज जाते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयबद्ध परीक्षा और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
1: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 छात्रों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है।
2: सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर नामकुम स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे एवं सुप्रियो भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की मिसाल रहा है। झारखंड राज्य में उनका योगदान अमिट है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब

30वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो तथा एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 3 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
1: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी

0: विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुन्नार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
1: जी।
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,

0: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
1: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
3: दादी माँ, दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ, दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
5: हाँ,
6: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काट।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
9: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
8: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
7: अरे वाह, अरे वाह अटकू मटकू।
4: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
6: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
2: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। दिन के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, संगीत वैसे तो मन को बहुत सुकून देता है, पर अगर गजलों की बात हो तो फिर सुकून के साथ साथ मन को आराम भी मिलता है। 15 मिनट के प्रोग्राम सुगम संगीत में आइए आज जगजीत सिंह और मिताली सिंह के दिलकश आवाज में कायद हो जाए और एक खास मौसीकी का आनंद ले। पेश खिदमत है ये पहली गजल।

आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मुताली सिंह की आवाज में गजल। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आपने ट्यून किया है 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:45 हैं। लोकगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी देर में।

कार्यक्रम लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं निरंजन शर्मा और उनके साथी। लीजिए सुनिए उनकी पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम लोकगीत में आप सुन रहे हैं अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं निरंजन शर्मा और उनके साथी, और अब आइए सुनते हैं उनकी अगली प्रस्तुति।

इसके साथ ही कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, और समाचार मुख्यांश के बाद शाम 4:02 पर आप सुनेंगे वीर सैनिक।

0: केंद्र है, आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस ने जिला कमेटी के नेतृत्व में साक्षी आम बगान से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। चतरा के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के लगभग 550 किसानों को बदलते मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक फसल अपनाने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि ऊपरी भूमि पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती लाभकारी साबित हो सकती है। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम सिंहभूम जिला में चाईबासा जमशेदपुर मार्ग पर कुज्जू पुल के पास हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी सिंहभूम जिले के पुटका थाना क्षेत्र के रोलाडी गांव निवासी 30 वर्षीय सूरज महाकुड़ के रूप में हुई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री और उससे अधिक पहुंच गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में। यह है देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जैन के असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा

0: जी
1: ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लाडेन बन गया।
0: हम्म,
1: और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो वो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
0: बिल्कुल,
1: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब इतना बड़ा आतंकवादी और इतना
1: बड़ा जी
0: कि सब जान,
1: भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है
0: जी,
1: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिस पे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोस खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला, BSF के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
0: जी।
1: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
0: जी।
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
0: जी,
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
0: जी
1: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
0: जी
1: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
0: बिल्कुल
1: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
0: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
1: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
0: कुछ बड़ा
1: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि PM का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
0: बिल्कुल,
1: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसको पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
0: बिल्कुल,
1: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
0: 36 घंटे
1: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
0: डिजाइन
1: बनाया था, डिजाइन
0: अच्छा।
1: किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वाकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे।

0: उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी।
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया है बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर शायद, सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा था
0: जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था।
1: अच्छा।
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों देख रहे थे, उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा।
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोली।
1: अच्छा।
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती, पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा, वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया,
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले, सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी जी,
1: मैं अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट जो कार्डिक एरिया है,
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बह के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने आपका दिल बचाया।
1: उसमें यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशन भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, फिर
1: हाँ कि होश मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
0: जी जी।
1: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
0: नहीं हो पाई,
1: नहीं हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
0: जी,
1: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप कर

0: करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट देवर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
1: जी,
0: रहा था
1: जी।
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट, बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन एक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना, सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया, सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उसे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी,
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है
1: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेस,
1: बिल्कुल,
0: हॉट केक इन द वैली,
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो अपने नमूने पेश करता।
0: मोर देन 9 इयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज इन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारीमर्ग किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जेएनके असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इंतहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवादी
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर, यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल, और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है, क्योंकि ये
0: क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल,
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल,
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम
1: सर, मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर,
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे
1: जी,
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल,
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार,
0: बटालियन का हेड था
1: जी, मेरे आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था, मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे,
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
1: मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल,
0: गाजी बाबू के माथे में घुसना कोई सिंपल,
1: और जैसे आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं,
1: मिलता नहीं,
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम, वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है, दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से, सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स,
0: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी
1: जी,
0: बाय द आईसी स्कॉडर्स, हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा

0: बहुत फेवरेट प्रोग्राम है सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एंड इन दुबे सर्कल। आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है। आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है या सिलचर असम से?
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
0: जी।
1: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है। ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैच
1: बच्चन, हाँ
0: अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
0: रखी है वो आपकी यादगार।
1: काम में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल।
1: काफी उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की फिल्म के अंदर। देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल।
1: है
0: सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
1: होते हैं।
0: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता,
1: वहां
0: जान जाएगी या जान ली जाएगी।
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
0: या मरने का,
1: तीसरा कुछ नहीं होता,
0: तीसरा कुछ नहीं। या तो
1: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
0: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
1: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है, ये कोई टीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
0: जी।
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं, प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त
0: जी,
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।
0: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर, मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य
1: चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सके।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ दर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए।
1: अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फर्वर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पे बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था, तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पे कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रहकर नहीं, कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे,
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है बीएसएफ में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: बीएसएफ में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है,
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल, इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटेन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
0: बिल्कुल।
1: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है,
0: मिलता है,
1: विदेश में जाने का मौका मिलता है।
0: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है

0: बहुत अच्छे से आपको समझ है और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं. और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए.
1: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
0: जी.
1: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
0: जी.
1: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए क्रिएट हुई
0: जी.
1: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया. 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
0: जी.
1: सरकारी
0: तो 25 साल जो सर आपने बीएसएफ में दिए उसके अलावा
1: ये 9 वर्ष एनआईए में.
0: अच्छा.
1: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
0: जी, जी,
1: और
0: जी.
1: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है.
0: अच्छा.
1: मेरे दिल से लगा हुआ है.
0: बिल्कुल.
1: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया.
0: अच्छा.
1: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं.
0: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. सर, एफएम रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. मैं ग्रेटर नोएडा से ग्रीश आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा. एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद.
1: थैंक यू सो मच गिरीश. आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं.
0: अच्छा.
1: थैंक यू सो मच. हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है. आप इस फिल्म को देखिए और आप उसको एंजॉय करिए. बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है. फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक.
0: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है.
1: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया. गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
0: जी.
1: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
0: जी.
1: और बड़ा उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की थी.
0: बिल्कुल.
1: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में. उस ट्रेजेडी के साये में फिल्म रिलीज हुई थी.
0: ओके.
1: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
0: जी.
1: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
0: जी जी जी
1: कश्मीर में. तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
0: जी. सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं. यश शिंदे हैं ये. डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप. नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप. चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है. नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है.
1: जबरदस्त आपने लाइन लिखी. आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रेमी हैं. थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड.
0: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे. हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें. जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए. आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए. लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है. तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है. हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं
0: जी.
1: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज हो.
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही. और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो. अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा. सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक.

0: कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जिले के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान 9 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में एक अज्ञात मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूर की मौत लू लगने की वजह से हुई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने 23 और 24 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 5:02 हुए हैं। युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युववाणी थोड़ी ही देर में।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नमस्कार दोस्तों, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपके साथ रेशमा मुर्मू। दोस्तों, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है और बदलते दौर के साथ समाज और देश की तस्वीर भी लगातार नई होती जा रही है। आज बात होगी उस ताकत की जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है, महिलाओं की भागीदारी की। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में सही और गलत

रास्तों का चुनाव किस तरह हमारे भविष्य को प्रभावित करता है, और फिर याद करेंगे भारत के उस युवा सोच वाले नेता को जिन्होंने तकनीक और आधुनिक भारत का सपना बहुत पहले देख लिया था, राजीव गांधी। तो अगले कुछ पलों तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि युवाणी का ये सफर अभी शुरू हुआ है।

0: दोस्तों, जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो अक्सर हमारे मन में चुनाव, सांसद और सरकार की तस्वीरें आती है। लेकिन लोकतंत्र की असली खूबसूरती सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि हर आवाज को बराबरी से सुनने जाने में होती है। और जब बात महिलाओं की हो तो उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि समाज की प्रगति का संकेत बन जाता है। आज महिलाएं शिक्षा, खेल, विज्ञान, मीडिया और राजनीति हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, लेकिन फिर भी निर्णय लेने वाली कई जगहों पर उनकी भागीदारी अभी भी कम दिखाई देती है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वे समाज के कई ऐसे मुद्दे को सामने लाती है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं, जैसे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर। भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी ने कई सकारात्मक बदलाव भी दिखाए हैं। आज गांव में कई महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। चलिए सुनते हैं लोकतंत्र में महिलाओं की प्रतिनिधित्व में युवाओं का क्या कहना है।
1: नमस्कार, मैं नेहा अंजुम जमशेदपुर से। मेरे हिसाब से आज के समय में महिलाओं का राजनीति और लीडरशिप में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता बल्कि इस बात से भी चलता है कि फैसले लेने वाली जगहों पर हर वर्ग की आवाज़ हो। आज महिलाएं हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस या मीडिया, तो फिर पॉलिटिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन कम क्यों हो? मुझे लगता है कि महिलाएं ऐसे कई मुद्दों को बेहतर तरीके से समझती हैं जो सीधे समाज और लोगों की डेली लाइफ से जुड़ी होती है, जैसे सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और ऑनेस्टली, जब डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ती है तो सोसाइटी ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रोग्रेसिव बनती है। इसलिए महिलाओं को सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि बराबर मौके मिलना भी बहुत ज़रूरी है।
0: तो ये थे युवाओं के विचार। असल में जब महिलाओं को बराबरी से अवसर मिलते हैं तो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति होती है। और शायद इसी वजह से आज की युवा पीढ़ी भी यह समझने लगी है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि एक बेहतर और मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है। तो आइए एक गीत सुनते हैं जो हौसले, उम्मीद और आगे बढ़ते रहने की भावनाओं को खूबसूरती से बयां करता है।

0: अभी आपने सुना गीत जीते हैं चल, फिल्म निर्जा से संगीतकार विशाल खुराना और इसके बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं। इसे आवाज गायिका कविता सेठ ने दी है। हौसला, उम्मीद और सही दिशा में आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ गलत रास्ता आसान और सही रास्ता मुश्किल लगने लगता है। इसी सोच के साथ वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे के अवसर पर आज के अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का समय युवाओं का समय कहा जाता है। नई सोच, नए सपने और कुछ कर दिखाने का जुनून, यही युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसी उम्र में लिए गए कुछ गलत फैसले जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। कई बार लोग गुस्से में, दूसरों के दबाव में या सोशल मीडिया पर फैली गलत बातों से प्रभावित होकर ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जिनका अंत सिर्फ पछतावे में होता है। गलत रास्ते शुरुआत में आसान लग सकते हैं क्योंकि वहाँ मेहनत कम और बहकावे ज्यादा होते हैं, लेकिन सही रास्ता वो इंसान से धैर्य मांगता है, मेहनत मांगता है और सबसे ज्यादा समझदारी मांगता है। चलिए सही और गलत रास्तों के चुनाव के बारे में युवाओं क्या सोचते हैं सुनते हैं।
1: जोहार, मेरा नाम दुखिया मार्डी है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है कि आजकल कई युवा जल्दी सफल होना चाहते हैं और इसी जल्दबाजी में कई बार लोग आसान रास्तों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हर आसान रास्ता सही हो यह जरूरी नहीं है। कई बार गलत संगत, सोशल मीडिया का प्रभाव या बिना सोचे समझे लिया गया फैसला इंसान को भटका सकता है, लेकिन सही रास्ते पर चलने के लिए धैर्य, मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है। मेरे हिसाब से असली सफलता वही है जहाँ इंसान सिर्फ आगे ना बढ़े बल्कि एक अच्छा इंसान भी बना रहे, और शायद इसीलिए सही रास्ता भले कठिन लगे लेकिन वही रास्ता हमें सम्मान, सुकून और बेहतर भविष्य देता है।
0: तो ये थे युवा के विचार। दोस्तों, यही वजह है कि आज वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे सिर्फ एक दिन नहीं

बल्कि एक संदेश है कि हिंसा और नफरत कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकते। आतंकवाद सिर्फ बम या हथियारों तक सीमित नहीं है, यह सोच से शुरू होता है। नफरत की सोच, कट्टरता की सोच और दूसरों को गलत समझने की सोच। और जब युवा गलत दिशा में भटकते हैं तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ऐसी बातें सुने जो हमें जोड़े तोड़े नहीं, क्योंकि जिंदगी में सफलता पाने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही इंसान बने रहना। और याद रखिए, सही रास्ता भले कठिन हो लेकिन वही रास्ता आपको सम्मान, शांति और बेहतर भविष्य देता है। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आज़ादी और अपने सफर को महसूस कराने जैसा लगता है।

अभी आपने सुना फिल्म रॉकस्टार का गीत फिर से उड़ चला, जिसके गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार एआर रहमान है और इसके गायक है मोहित चौहान। दोस्तों, हर उड़ान किसी न किसी सोच से शुरू होती है और कई बार तो सोच समय से बहुत आगे की होती है। ऐसे ही एक विचारशील और दूरदर्शी नेता थे राजीव गांधी, और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम बात करेंगे भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की उस शुरुआती सोच की जिसने देश को एक नई दिशा दी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि उनकी सोच से बनी, एक ऐसी सोच जो समय से आगे देखती थी। 1980 के दशक में जब दुनिया तेजी से कंप्यूटर और तकनीक की ओर बढ़ रही थी, तब भारत अभी भी कई जगहों पर पारंपरिक व्यवस्थाओं पर निर्भर था। यही वह समय था जब उन्होंने महसूस किया कि आने वाला दौर सूचना और तकनीक का होगा। इसी समझ के साथ उन्होंने कंप्यूटर, टेलीकॉम और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उस समय कई लोगों के मन में डर था कि कहीं मशीनें इंसानों की जगह ना ले लें। ऐसे माहौल में उन्होंने एक सरल लेकिन दूरदर्शी सोच दी, तकनीक किसी की दुश्मन नहीं बल्कि विकास का साधन है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा, कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार हुआ, टेलीकॉम सेक्टर में नई ऊर्जा आई और एसटीडी, पीटीसी, पीसीओ जैसी सुविधाओं ने संचार को आम लोगों तक पहुंचा दिया। यही वह मोड़ था जहां से भारत ने अपने डिजिटल सफर की पहली सीढ़ी चढ़ी। आज जब हम घर बैठे ऑनलाइन क्लास करते हैं, मोबाइल से पेमेंट करते हैं और दुनिया से तुरंत जुड़ जाते हैं, तो उसकी जड़ें उसकी शुरुआती सोच से दिखाई देती है। राजीव गांधी का मानना था कि भारत की असली ताकत उसके युवा है, और अगर युवाओं को तकनीक और शिक्षा से जोड़ा जाए तो देश की रफ्तार खुद बदल सकती है। आज भारत आईटी और डिजिटल दुनिया में एक मजबूत पहचान बना चुका है। स्टार्टअप्स, टेक कंपनियां और नई तकनीकें इसी नई कहानी लिख रही हैं। और जब हम इस डिजिटल भारत को देखते हैं तो ये साफ महसूस होता है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत किसी एक दूरदर्शी सोच से होती है। राजीव गांधी की वही सोच एक आधुनिक, तकनीक समृद्ध और भविष्य की ओर बढ़ते भारत की कल्पना आज भी देश के विकास की कहानी में एक अहम अध्याय बनी हुई है। तो चलिए सुनते हैं गीत जो जिंदगी को हल्के, खूबसूरत और उम्मीद भरे अंदाज में देखने की याद दिलाता है।

अभी आपने सुना फिल्म वेकअप सिड का गीत आजकल जिंदगी, जिसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे, संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय और आवाज़ से शंकर महादेवन ने सजाया था। और इसी के साथ दोस्तों, हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने से पहले आइए नज़र डालते हैं कुछ जानकारियों पर खेल जगत से। IPL 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लीग चरण का एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा और कोलकाता नाइट राइडर्स से 4 विकेट से हारने के बाद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होंगे। उम्मीद है आज की चर्चा ने आपको सोचने के लिए नए विचार दिए होंगे और आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा भी, क्योंकि बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वह हमेशा सही सोच और छोटे छोटे जागरूक कदमों से शुरू होता है। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम युववाणी और मुझे यानी रेशमा मुर्मू को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय नई ऊर्जा के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम कल कारखाने में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं मालती, आपके संग आधे घंटे के इस कार्यक्रम को के साथ बहुत सारी जानकारियां लेकर उपस्थित हूं। श्रोताओं, हम आपको बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। क्या आप जानते हैं कि पानी के बाद दुनिया में किस पेय पदार्थ का सेवन किया जाता है? शायद पानी के बाद सबसे अधिक सेवन करने वाला पेय चाय है। यह सबसे पुराने पेय में से एक है। आप कितने भी थके हों, चाय की एक प्याली आपकी थकान को मिटा देती है। जश्न का माहौल हो या फिर चार दोस्तों की महफिल जमी हो, चाय की प्याली जरूर मौजूद होती है। बड़े बुजुर्गों के लिए ये टाइम पास है तो कहीं मेहमानबाजी का हिस्सा भी है। ठंड के मौसम में तो कुल्हड़ वाली चाय का कहना ही क्या। दुनिया भर में कई समुदायों में चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। यह न केवल एक पेय है बल्कि आतिथ्य, परंपरा और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक भी है। चाय की खेती लाखों छोटे किसानों को रोजगार और आय प्रदान करती है, जो कई देशों में बड़े चाय बागानों की जगह ले रहे हैं। हालांकि उत्पादित चाय का 3/4 हिस्सा घरेलू स्तर पर ही खपत हो जाता है, फिर भी चाय व्यापक रूप से व्यापार चाय का होता है। पिछले कुछ दशकों से विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यह लाखों परिवारों की आजीविका का स्रोत है। चाय निर्यात से होने वाली आय खाद्य आयात बिलों के वित्त पोषण में मदद करती है, जिससे चाय उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। विश्व भर में चाय के लंबे इतिहास और सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के साथ साथ विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया और एफएओ से इसके पालन का नेतृत्व करने का आह्वान किया। हम दुनिया में कहीं भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां या चुनौतियां क्यों ना हो, एक कप चाय पीने का सरल कार्य हमें एक सुखद विराम का एक पल प्रदान करता है।

0: कसम खाओगे ना?
1: नहीं बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: फिल्म स्वातन का ये गीत था। लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाजें थीं। शब्द रचना सावन कुमार और प्रदीप कौशिक की थी। संगीत था उषा खन्ना और कमल जोशी का। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में इन दिनों एक नई तकनीक एआई की आई है, जिसको काफी तेजी से अपनाया जा रहा है। उद्योगों में भी एआई की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें अभी चुनौतियां भी हैं। आइए आज इसी संदर्भ में आपको सुनवा रहे हैं सुप्रिया श्रीवास्तव की ये वार्ता। विषय है उद्योगों में एआई की बढ़ती उपयोगिता और संभावित चुनौतियां।
3: यह हमारा समाज, यह दुनिया, इसमें बदलाव की अविरत धारा निरंतर चलती रहती है और यह शायद जरूरी भी है, क्योंकि यह हमारे जिज्ञासु और अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति है जिसने हमें पाषाण काल से प्राग ऐतिहासिक काल, आदि मानव काल, सभ्यता काल और आधुनिक काल की क्रमशः यात्रा कराई है। इस यात्रा के दौरान हमने कई खोज और आविष्कार किए हैं। इसके हमें कई अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही तरह के परिणाम मिले हैं और इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों ने ही हमें वहां पहुंचाया है जहां हम आज खड़े हैं। आज फिर हम एक ऐसी ही क्रांतिकारी खोज जिसने हमारे समाज के हर क्षेत्र को पुनः प्रभावित किया है, उसी की व्याख्या करेंगे। जी हां, वह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में सीधा मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या शिल्प निर्मित बुद्धिमत्ता, मतलब इसका शिल्पकार या निर्माता स्वयं इंसान ही है। इसकी खोज 1950 के दशक में जॉन मेकार्थी द्वारा की गई थी। आइए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। दरअसल यह पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत एवं आत्मचेतन जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो यह सिस्टम डाटा का विश्लेषण करके, पैटर्न पहचान कर और उनकी मदद से खुद का निर्णय लेकर इंसान की तरह कार्य कर सकता है। एआई एक इस प्रकार का काम करता है जिनमें नैरो, जनरल, सुपर, रिएक्टिव मशीनें, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर शामिल है। अब बात इसकी उपयोगिता की करें तो इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और इसमें आगे विस्तार की संभावना बहुत ज्यादा है। आज कई क्षेत्र में इनका लाभ हमें मिल रहा है, जैसे मशीनी शिक्षा, गहन शिक्षण, न्यूरल नेटवर्क, ग्राहक सेवा, डाटा विश्लेषण, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में। यदि औद्योगिकी के क्षेत्र पर चर्चा की जाए तो आज औद्योगिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यह सिर्फ एक तकनीक ही नहीं बल्कि उत्पादन दक्षता और निर्णय लेने के तरीकों में एक क्रांति ला रहा है। आइए एक बार उन बिंदुओं को भी जानने की कोशिश करते हैं कि एआई औद्योगिक क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है। एआई संचालित रोबोट और मशीनें विनिर्माण प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित कर रही है। ये रोबोट दोहराए जाने वाले और जोखिम भरे काम बिना किसी गलती के कर सकते हैं, जिससे उत्पादन की गति और सटीकता बढ़ती है। और एआई आधारित कंप्यूटर विजन सिस्टम बहुत कम समय में हजारों उत्पादों की जांच करते हैं और किसी भी तरह के दोष या कमी का पता लगाते हैं। इससे दोषपूर्ण उत्पादों के बाजार में आने की संभावना कम हो जाती है, जिससे कंपनी की छवि और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है। एआई एल्गोरिदम मशीनों से आने वाले डेटा जैसे कंपन, तापमान का विश्लेषण करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई मशीन कब खराब हो सकती है। इससे पहले ही उसकी मरम्मत की जा सकती है, जिससे उत्पादन में रुकावट नहीं आती और मरम्मत का खर्च भी कम हो जाता है। एआई लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह बाजार की मांग का अनुमान लगाकर इन्वेंट्री को अनुकूलित करता है, जिससे न तो स्टॉक की कमी होती है और न ही बहुत ज्यादा स्टॉक जमा होता है। एआई संचालित सिस्टम सबसे तेज और सबसे कुशल डिलीवरी रूट का सुझाव देते हैं, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। एआई कारखानों में ऊर्जा खपत को नियंत्रित करती है और उसमें सहायता करती है। यह ऊर्जा उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण करके उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इससे न केवल लागत में कमी आती है बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एआई आधारित कैमरे और सेंसर संभावित खतरों का पता लगा सकते हैं और श्रमिकों को अलर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा खतरनाक कामों में एआई संचालित रोबोटों द्वारा काम करने में मानव श्रमिकों के लिए जोखिम कम हो जाता है। एआई औद्योगिक क्षेत्र में दक्षता, उत्पादकता और सुरक्षा को बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। यह उद्योगों को ज्यादा स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ बना रहा है, जिससे भविष्य में और भी अधिक नवाचार की उम्मीद है। अब यदि बात करें स्वास्थ्य सेवाओं में इसकी उपयोगिता की, तो इसमें भी इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में एआई का उपयोग ऐसे एल्गोरिदम विकसित करने के लिए किया जाता है जो व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य जोखिमों का पूर्वानुमान लगाकर रोगियों के परिणामों को बेहतर बनाती है। इसकी मदद से गंभीर और असाध्य रोगों जैसे कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर बहुत आसानी से हो पा रही है। अब रोबोटिक सर्जरी की मदद से सर्जन को ऑपरेशन करना बहुत आसानी हो गया है। अंततः स्वास्थ्य सेवा में एआई का लाभ यह है कि यह खोज के समय और लागत को कम करके दवा विकास में तेजी ला रहा है। स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता करती है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करते हैं इसके योगदान की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कई तरीकों से बेहतर बना रहा है। एआई प्रत्येक छात्र की जरूरतों, सीखने की शैली और गति के अनुसार शिक्षण सामग्री को, रणनीति को अनुकूलित कर सकता है। यह छात्रों के प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करता है और सीखने की कठिनाइयों या समझ में कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। एआई छात्रों को उनकी रुचियों, लक्ष्यों और सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम सामग्री बनाने में भी मदद कर सकता है और यह शिक्षकों की भी दक्षता में वृद्धि प्रदान करता है। एआई शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों जैसे असाइनमेंट ग्रेडिंग, उपस्थिति पर नजर रखने और छात्र रिकॉर्ड बनाए रखने को स्वचालित करने में मदद करता है। इससे शिक्षकों को छात्र के साथ जुड़ने और पाठ वितरण में सुधार करने के लिए अधिक समय मिलता है। एआई संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट शिक्षकों को कक्षा के बाहर छात्रों को तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान करने में भी मदद करता है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म माध्यम से एआई ग्रामीण या वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच में अंतराल को पाटने में मदद करता है। एआई संचालित सहायक तकनीकें विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को बदल सकती है। एआई आधारित सिस्टम छात्रों को व्यक्तिगत रूप से ट्यूटरिंग प्रदान करता है, जिससे उनका संपूर्ण विकास होता है। कृषि के क्षेत्र में भी एआई की उपयोगिता बहुत सराहनीय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि को क्रांतिकारी तरीके से बदल रहा है, जिससे किसानों को अधिक उत्पादकता, दक्षता, स्थिरता और अधिक सटीकता प्राप्त करने में मदद मिल रही है। एआई फसल, मौसम और कीटों से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके किसानों को सटीक और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। एआई सेंसर और ड्रोन का उपयोग करके फसलों के स्वास्थ्य, वृद्धि और रोगों का लगातार मूल्यांकन करता है, जिससे किसानों को संभावित समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में मदद मिलती है। यह पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को अनुकूलित करता है, जिससे लागत कम होती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। एआई मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की कमी और नमी के स्तर का विश्लेषण करके किसानों को उचित मृदा प्रबंधन रणनीतियां बनाने में मदद करता है। एआई किसानों को मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजकर कीटों के खिलाफ आवश्यक सावधानियां बरतने और कीट प्रबंधन को अपनाने में मदद करता है। एआई मानव श्रमिकों को

0: कई कार्यों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कटाई, निराई, गुड़ाई और छिड़काव। AI बाजार की मांग और आपूर्ति का अनुमान लगाने में मदद करता है, जिससे किसान अपने फसलों का उत्पादन और बिक्री अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। AI कृषि के क्षेत्र में एक शक्तिशाली उपकरण है, जो किसानों को चुनौतियों का सामना करने और अधिक कुशल उत्पादक और लाभदायक कृषि प्रणालियों का निर्माण करने में मदद कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले संभावित नुकसान और चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। हालांकि इसके कई फायदे हैं, लेकिन इससे कई प्रकार के नुकसान और जोखिम भी जुड़े हुए हैं। अब एक नज़र डालते हैं इससे होने वाले नुकसान पर, जैसे नौकरी का विस्थापन और रोजगार का संकट। AI कुछ हद तक ऐसे कार्यों को स्वचालित कर सकता है जो पहले मनुष्य द्वारा किए जाते थे, जैसे विनिर्माण में असेंबली लाइन पर इंसानों की जगह रोबोट की तैनाती। AI के साथ काम करने के लिए नए कौशलों की आवश्यकता हो सकती है, और जो लोग इन कौशलों को नहीं सीखते हैं, उन्हें रोजगार में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। AI उच्च कुशल नौकरियों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिससे कुछ नौकरियां में कमी आ सकती है और मजदूरी कम हो सकती है। फिर इसके दूसरी तरफ निजता और डेटा सुरक्षा का उल्लंघन, गोपनीयता का उल्लंघन, साइबर सुरक्षा के खतरे जैसी और भी तमाम चीजें हैं। जैसे AI सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, जिसमें अक्सर व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी शामिल होती है। डेटा के गलत हाथों में पड़ने या साइबर हमलों का शिकार होने पे गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। AI सिस्टम में साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम भी होते हैं, जो दुर्भावनापूर्ण उपयोग के लिए उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर आगे अगर गौर करें तो पक्षपात और भेदभाव जैसे और भी चीजें हैं। AI मॉडल जिस डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं, उसमें अगर पूर्वाग्रह होता है तो AI सिस्टम भी पूर्वाग्रहपूर्ण परिणाम दे सकता है। पूर्वाग्रहपूर्ण AI सिस्टम भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे नौकरी के लिए आवेदन, ऋण अनुमोदन और आपराधिक न्याय जैसे क्षेत्रों में अनुचित निर्णय हो सकते हैं। कुछ AI एल्गोरिदम इतने जटिल होते हैं कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे कैसे कार्य निर्णय लेते हैं। मानव निर्भरता और कौशलता में कमी। AI पर अत्यधिक निर्भरता मनुष्यों की सोचने और समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। AI पर निर्भरता से कौशल, ज्ञान और आलोचनात्मक सोच में कमी आ सकती है। AI में मानवीय रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी होती है, जो नए समाधान बनाने या कलात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में बाधा डाल सकती है। अब देखा जाए तो नैतिक दुविधाएं और दुरुपयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे AI से संचालित हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है, जो मानव हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने और हमला करने में सक्षम होगी, जिससे नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। AI का उपयोग सामाजिक मीडिया रुझानों और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। और भी कुछ अन्य जोखिम भी हैं, जैसे AI सिस्टम के विकास और रखरखाव में उच्च लागत शामिल है। AI सिस्टम में सुरक्षा संबंधी कमजोरियां हो सकती हैं, जिनका दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। और फिर जब AI सिस्टम गलती करती है या नुकसान पहुंचाती है, तो जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाती है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि AI के विकास और तैनाती से जुड़े हुए जोखिमों को समझना और समय रहते उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। नैतिक दिशा निर्देशों, नियामक ढांचे और मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ AI की जिम्मेदारी से उपयोग करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AI मानवता के लिए फायदेमंद रहे।
1: उद्योगों में AI की बढ़ती उपयोगिता और संभावित चुनौतियां, इस विषय पर जानकारी दे रही थी सुप्रिया श्रीवास्तव। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मन की आंखें का ये गीत। गीतकार हैं साहिर और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजे हैं अब समाचार प्रसारित होंगे।

भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओहो यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said, that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal said, they are continuously coordinating with the Minister of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders.

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आप सुन रहे थे हो लोकगीत प्रेम सिंह पूर्ति और उनके साथियों से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से।

श्रोता मित्रों, आज 21 मई है। आज के दिन को भारत हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाता है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखना, उनमें शांति और संदेश देना, साथ ही आम जनता को होने वाले नुकसान को उजागर करना और देश में शांति, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। ग्रामीण श्रोता मित्रों, इस दिवस को आज ही के दिन मनाने का उद्देश्य यह है कि आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को आतंकवादियों ने तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हत्या कर दी थी। उनकी स्मृति में और आतंकवाद के खिलाफ देश के संकल्प को मजबूत करने के लिए ये दिन घोषित किया गया और हर वर्ष आज के दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में देशवासी मनाते हैं। और अब कुछ बातें सेहत मिशन की। ग्रामीण श्रोता मित्रों, सेहत मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका पूरा नाम साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एग्रीकल्चर है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य खेती और स्वास्थ्य विज्ञान को जोड़कर देश से कुपोषण को दूर करना और लोगों को स्वस्थ आहार प्रदान करना है। इस अवधारणा का मुख्य आधार भोजन ही दवा है। इसके तहत केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य का बेहतर बनाने वाली पौष्टिक फसलों के उत्पादन पर जोर देना भी है।

ग्रामीण भाइयों, किसानों को आयरन और जिंक से भरपूर फसलों, मोटे अनाजों जैसे बाजरा, रागी, ज्वार और पोषक तत्वों से भरपूर पशु उत्पादों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण भाइयों, इस मिशन के तहत कृषि विभाग ICAR और स्वास्थ्य विभाग ICMR एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत खराब खानपान के कारण होने वाली गंभीर और गैर संचारी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कुपोषण की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है।

और अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और कौशल विकास योजना को साकार करता इंडो डेनिश टूल रूम। भेंट वार्ताकार हैं इंडो डेनिश टूल रूम के महाप्रबंधक श्री रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातें करते हैं।

0: ग्रामीण श्रोता मित्रों, इंडो डेनिस टूल रूम जो कि अब एमएसएमई टूल रूम के नाम से जाना जाता है, उनके महाप्रबंधक जीएम श्री रविंद्र कुमार जी से हमारी आज बातचीत हो रही है उनके प्रांगण में। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, आदिवासी और हरिजन और ओबीसी के बच्चों के लिए यहाँ जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं और उनसे वो लाभान्वित हो रहे हैं, तो किस प्रकार ये उनको लाभान्वित कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, और जो हमारा प्रधानमंत्री का विजन है अधिक से अधिक बच्चों को कौशल विकास करके उनको रोजगार उन्मुख बनाना है, उस क्षेत्र में ये इंडो डेनिस टूल रूम कितना सशक्त होकर काम कर रहा है। तो सबसे पहले रविंद्र जी, आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमने 26 मार्च को इस इंडो डेनिस टूल रूम को ज्वाइन किया है, और हम पहले प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, और तो हमारा एक्सपीरियंस जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ में अच्छा रहा है, और हम प्लांटेड के रूप में काम किए हैं, तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट रही है उसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये IDTR को ज्वाइन किया महाप्रबंधक के रूप में। और हमने प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो व्यवस्था सारी अच्छी है, मशीनरीज और सेटअप अच्छा है, और लोगों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, पिछले सालों में बहुत लोगों को ट्रेंड किया गया है, और हम लोग इस स्तर पे ट्रेनिंग देते हैं कि ये लोग रेडी टू मूव टू इंडस्ट्री हैं, ताकि उद्योग में जो रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरह योग्यता की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो टूल रूम में हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे मैकेट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमेशन में हो, तो इस तरह की सारी व्यवस्था यहाँ रखी गई है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज और लॉन्ग टर्म कोर्सेज दो तरह के कोर्सेज के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जहाँ पे यहाँ पे जो देखा गया है वो इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे आते हैं और प्लेसमेंट भी करते हैं और लोगों को अच्छी नौकरियाँ दे रहे हैं, तो इस ये तो अच्छी चीज़। और दूसरा चीज़ है क्या, गरीब तबके के लोगों के लिए, जैसे SC ST लोग हैं, तो उनका है फ्री में एजुकेशन होता है, इसमें पैसा नहीं लिया जाता है, हॉस्टल की सुविधा यहाँ है, वहाँ भी पैसा नहीं लिया जाता है, तो सब कुछ जो है वो सरकार उसको देखती है। और OBC के लिए क्या है कि हम लोग वो पैसा लेते हैं, लेकिन वो फिर वो अप्लाई करते हैं अपने OBC सर्टिफिकेट को लेके, फिर उससे रिटर्न लेते हैं वो लोग। तो सारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है और जो योजनाएं हैं उस चीज़ को कार्यान्वित करने के लिए हम लोग बहुत तत्पर हैं, और अच्छे से हम लोग और आगे बढ़ाएंगे इसको, और भविष्य में जो भी नए नए तकनीक आ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी नया जो 26-27 में प्लान बनेगा, उसमें बहुत सारी मशीनरी, जैसे टूल में जरूरत पड़ता है लेजर मशीनिंग का नई तकनीक है, और डिफरेंट विभिन्न 5-axis मशीन की जो रिक्वायरमेंट है, तो इन सब चीज़ को हम लोग खरीद के और अगेन तकनीक को और उच्चतर स्तर पर ले जाएंगे, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग और ज़्यादा बढ़िया से पढ़ सकें और रेडी टू इंडस्ट्री रहें।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा सर, अभी जो 4 वर्षीय कोर्स यहाँ जो चल रहा है, जिसमें कि DTDM है, DTDUM है, और आपका मैकाट्रॉनिक्स है, तो इसके लिए बच्चे कैसे आपके पास आएंगे, क्या वो अप्लाई कैसे करेंगे, इस बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिए।
1: हर साल जो है इसके लिए क्या है कि हम लोग फॉर्म निकालते हैं, जैसे अभी निकला हुआ है इस साल के लिए, तो इस साल का फॉर्म निकला हुआ है, और जुलाई के स्टार्ट में एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो हम लोग लेते हैं, और उसके बाद जब एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको ही एडमिशन होता है यहाँ पे, और फॉर्म भरने के बाद हम लोग उसको एडमिट कार्ड भेजेंगे, और एडमिट कार्ड के बाद उसके बाद वो एग्ज़ाम देंगे। हमारा सेंटर जमशेदपुर में ही IDTR में ही रहता है जी। और दूसरा सेंटर एक है हमारा एक्सटेंशन सेंटर पटना है जी। जो अलग तिथि, दोनों की तिथियां अलग अलग रहती हैं, और उस तिथि में वहाँ एग्ज़ाम होगा, और जो लोग पटना के नज़दीक हैं पटना में एडमिशन लें, जो लोग जमशेदपुर के नज़दीक हैं जमशेदपुर में एडमिशन लें, दोनों सेंटर तकनीकी रूप से सक्षम है लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए।
0: अच्छा, कितनी सीटें हैं, एक पर ईयर आप कितने छात्रों को यहाँ प्रवेश देते हैं?
1: यहाँ पे जनरली 600 छात्रों को 600 अप्रोक्सीमेटली छात्रों को एडमिशन देते हैं। अगर मोर प्रिसाइज बोले तो 525 लोगों को हम लोग एडमिशन देते हैं।
0: और किस तरह की कंपनियां उनको प्लेसमेंट करने के लिए आती है?
1: प्लेसमेंट में ज़्यादातर जो है जैसे टाटा स्टील है, RKFL है, और कुछ हैदराबाद की कंपनियां हैं,
0: जी
1: जो चेन्नई की कंपनी भी आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और अभी हम लोगों ने मारुति के लिए, मारुति भी आ रही हैं
0: जी
1: और OEM भी है, और कुछ Tier 1 और Tier 2 की कंपनी जो अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे स्तर पे हैं, जो NCR दिल्ली के एरिया के हैं, उनको भी स्टार्ट किया है इस साल से।
0: तो ये लो, ये तो बहुत अच्छे पैकेज पे यहाँ के छात्रों को ले जाते होंगे।
1: हाँ, पैकेज अच्छा रहता है, जो मतलब 20,000 से लेके 35,000 तक का रेंज आता है जो सैलरी स्टार्टिंग मिलती है। तो कुछ ऐसे मारुति सुजुकी में ज़्यादा पैसा मिल जाता है,
0: जी
1: जो जैसे RKFL में थोड़ा कम मिलता है।
0: जी
1: तो कंपनी लोकेशन वाइज भी है, और
0: जी
1: कंपनी का OEM है तो थोड़ा ज़्यादा सैलरी देती है, तो उस हिसाब से जो लड़के हैं उस हिसाब से बैठते हैं और उस हिसाब से प्लेसमेंट लेते हैं।
0: जी अच्छा, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो भी आपके यहाँ ट्रेनिंग करती हैं, तो उनका क्या अनुपात रहता है लड़कों के अनुपात में?
1: अनुपात में जनरली क्या है कि 30-70 के आसपास अनुपात रहता है।
0: जी
1: लड़कियां भी बहुत ज़्यादा अभी देख रहे हैं कि कुछ विगत 3-4 सालों से मैकेट्रॉनिक्स और DTDM में भी एडमिशन ले रही हैं,
0: जी
1: और इनका ज़्यादा अप्रोच जैसे हम लोग यहाँ प्लेसमेंट में भी है, RST इंडिया लिमिटेड फुल जापानीज कंपनी है,
0: जी
1: बॉस इंडिया लिमिटेड है, ये सब अच्छी कंपनियाँ जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा प्रेफर करती हैं
0: जी
1: तो वहाँ पे जाती हैं, बेंगलोर वगैरह में।
0: एक तरह से ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन है, आत्मनिर्भर भारत और कौशल विकास, उस दोनों ही दिशा में ये बेहतर काम कर रही है, और आने वाले पीढ़ी जो हमारे नए नए छात्र हैं, इस ओर मुखातिब हैं, और वो कौशल अपना विकास करके रोजगार भी पा रहे हैं। आगे आप ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: ग्रामीण क्षेत्र को ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आके एडमिशन लें, अगर मान लिया कि आपने कहीं से और से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं ताकि दैट इज रेडी टू इंडस्ट्री है, तो उस पे आप 4 महीने का कोर्स कर लें, 6 महीने का कोर्स कर लें, तो उससे क्या है कि आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी, और इससे क्या होगा आपको ही बेनिफिट मिलेगा और समाज का भी बेनिफिट मिलेगा, यही है हम बोलना
0: अच्छा,
1: चाहते हैं।
0: ITI जैसे पहले होता था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते थे, तो अब हमको लगता है कि उसके बजाय आपके यहाँ इस तरह का फिटर, ट्रेड और टर्नर, मैशनिस्ट, ये सब कोर्सेज के जो ट्रेनिंग है वो आपके यहाँ दिए जा रहे हैं?
1: हाँ, ITI से ट्रेनिंग होता है, ITI के थ्रू फिटर, वेल्डर, टर्नर हैं,
0: जी
1: ये सब भी ट्रेनिंग होता है, और ये तो 2 साल का कोर्स हो जाता है,
0: जी
1: तो उसके थ्रू आप इंडस्ट्री को हम लोग प्रोवाइड करते हैं मैन पावर जो मशीन को रन कर सकें, और एक स्किल्ड मैन पावर को हम लोग देना चाहते हैं इंडस्ट्री को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, आपने जाना कि किस तरह इंडो डेनिश टूल रूम औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ के कंपनियों को किस तरह से कौशल से विकसित छात्र और छात्राएं उपलब्ध करा रही है, और प्रधानमंत्री के विजन को, के सपने को भी साकार कर रही है। सर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

आप सुन रहे थे भेंट वार्ता इंडो डेनिश टूल रूम के महाप्रबंधक रविंद्र कुमार से ली गई, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार उनका संस्थान प्रधानमंत्री के कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में लगी है। और अब कुछ जानकारी भी जी राम जी की।

0: ग्रामीण श्रोता मित्रों, वीवीजी रामजी अर्थात विकसित भारत जी रामजी विधेयक, जिसके तहत 2025 से 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित कर एक नई सांविधिक संरचना के तहत मनरेगा को विकसित किया गया है। इसके तहत रोजगार गारंटी को प्रति ग्रामीण परिवार बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे आय की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के साथ मजदूरी और रोजगार से जोड़ता है। इस योजना में किसानों और मजदूरों को सुविधाएं दी गई हैं। वे फसल की कटाई या बुआई के मौसम में 60 दिन तक का ब्रेक ले सकते हैं। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही इसके तहत गांवों में जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं। और अब आइए सुनते हैं एक भोजपुरी लोकगीत वीरेंद्र कुमार तिवारी से।
1: कहवा फूलेला

आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र तिवारी से ये देवी गीत। और अब कुछ बातें जैविक खेती की विधि और लाभ की। ग्रामीण श्रोता मित्रों, जैविक खेती कृषि की वह प्राकृतिक पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खादों, जैविक कचरे, फसल चक्र और हरी खाद पर निर्भर करती है। जैविक खेती के तहत अपनाई जाने वाली फसल चक्र से एक ही खेत में बार बार एक ही फसल बोने के बजाय अलग अलग फसलें, जैसे दलहन के बाद अनाज उगाई जाती है, ताकि ऐसा करने से मिट्टी के पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है। जबकि हरी खाद के उपयोग से मुख्य फसल बोने से पहले खेत में तेजी से बढ़ने वाले पौधे उगाकर उन्हें मिट्टी में ही जोत दिया जाता है, जिससे मिट्टी को नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। किसान भाइयों, इसके उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवी की संख्या में वृद्धि होती है। साथ ही इससे बाजार में मिलने वाले महंगे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, जिससे किसानों की लागत भी घटती है। और अब अंत में कुछ बातें गर्मियों में सर्पदंश की घटनाएं और सावधानियां एवं इलाज की। ग्रामीण भाई बहनों, गर्मियों के मौसम में बढ़ते तापमान के कारण सर्प अपने ठंडे बिलों से निकलकर रिहायशी इलाकों, बगीचों या ठंडी जगहों की ओर आते हैं, जिससे सर्पदंश का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि जगत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेसा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा के देवासी हेमब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज उच्च

0: की उच्च शिक्षा को नई दिशा देना एक महत्वपूर्ण अवसर है।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा।
2: 30 जून से 29 जुलाई तक है, इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी, वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा मतलब उसका साथ में करेंगे, उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक उनका 18 उम्र हो गया वो झारखंड में रहता है उनका नाम जरूर आएगी, उनके लिए हम लोग सभी जगह पर ईआरओ एईआरओ एडिशनल एईआरओ बीएलओ बीएलओ सुपरवाइजर वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे।
1: राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली से ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
3: पेसा अधिनियम को पारित किया गया, इस पर सरकार बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ रही है। विभाग के सभी लोग और जिला प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी जो शेड्यूल एरिया से जुड़े हुए हैं पूरी तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। जो पारंपरिक ग्राम सभा के हेड्स होंगे उन लोगों की नियुक्ति वो जारी है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए यह बहुत संवेदनशील है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सके इसके लिए सभी लोग लगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और परिचालन सुरक्षा में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
4: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
1: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
5: आज सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि

0: तेजी से मुख्यधारा में जुड़।
1: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सांसद कालीचरण मुंडा के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद कालीचरण मुंडा और जिला प्रभारी चौतो उरांव विशेष रूप से उपस्थित थे। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप और गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघगर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज उन्हें विधानसभा में सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा कभी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती।
2: हमारी झारखंड की बेटी, देश की बेटी देवासी थाईलैंड में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आया है। ये हम सबों के लिए एक गौरव का क्षण है। जब मेधा कोई गरीब और अमीर को पहचान के नहीं होता है, आज भी वैसे मेधावी हर जगह उपस्थित। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है समाज को, सरकार को, सारे लोगों को ऐसे मेधा को ढूंढ निकालना।
1: हॉकी इंडिया ने 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा में होने वाले पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड के दो खिलाड़ी आशीष तानीपुरती और प्रेमचंद सोई को जगह मिली है। उनके चयन पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग ने पूरी टीम को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेशा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से करीब 107 करोड़ की लागत से हजारीबाग शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माता चौक से लेकर सिंदूर बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का पूर्ण निर्माण किया जाएगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बताया,
2: उसको भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और ये जो एरिया है आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ से लेकर के नगवा तक में तो जितना बाईपास हुआ है इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक अभी किया जा रहा है 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है।
1: हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में सड़क यातायात सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी बैजनाथ कामती बताते हैं,
3: पूरे देश में 600

0: जिलों में घूम घूम कर वहाँ के जो लोकल प्रशासन से मिलकर एक अभियान चलाते हैं। उसी तत्वाधान में ये लोग आज शनिवार से ही यहाँ पर हैं। डिस्ट्रिक्ट मोड पर ये कार्यक्रम था, उसी में हमारा परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा, जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, कैसे रोड पर चले, क्या नियमों का पालन करें, यही सब की जानकारी लोगों को दी गई और फाइन भी काटा गया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 सालों में जहाँ लोग जीरो हेलमेट पहनते थे, अब परिवर्तन आ रहा है। आने वाले समय में 100% लोग हेलमेट जरूर पहने।
1: एशिया का सबसे गर्म बरकट्ठा सूर्यकुंड को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्र भ्रमण किया है। क्षेत्र भ्रमण करने के बाद हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने बताया,
2: सूर्यकुंड को अभी जिस जिला परिषद के द्वारा उसको संचालन किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसमें लगभग लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, तो स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ के मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी के साथ मिलकर के ये कुछ बातें तय हुई है, जिसमें हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारे कार्यों को कराया जाना है ताकि और पर्यटक आ सके और पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर वो अपनी जगह बना पाए। इसके अलावा पाताल लोक धाम का भी भ्रमण किया गया। यहाँ पर किसी भी विषम परिस्थिति में भी यहाँ पर 24/7 बहुत ही अच्छा पानी आता है कि सभी लोग यहाँ से पानी पीते हैं और इस पानी की अपनी एक ऐतिहासिक मान्यता है। हम लोगों के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस चीज़ को भी संज्ञान में लाया गया है और जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को यहाँ पर ठीक कराया जाएगा। स्नान घाट बनाया जाएगा, इसके अलावा चेंजिंग रूम बनाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के आह्वान का देश में तत्काल और व्यापक असर दिखा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद राणा चार पहिया वाहन छोड़कर मोटरसाइकिल से कार्यालय आना जाना शुरू किए हैं। इनका कहना है
3: कि जहां तक हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थानों पर जो हम आयात करते हैं, पेट्रोल, सोना आदि आदि। तो मैंने तय किया है कि जहां कहीं संभव हो अपने वाहन से चलूं, हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे साथ चलते हैं। क्षेत्र भ्रमण भी आज से बाइक से ही कर रहा हूँ और काले हम इसी से आ रहे हैं। राष्ट्र बचाने के लिए तेल नहीं, राष्ट्र रहेगा तो मेरा हम रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, मैं महापौर रहूंगा। तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है और राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए हम सबों को, हर भारतवासियों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब भी इन्होंने देश हित में लोगों से आह्वान किया तो लोगों ने उनकी अपील का स्वागत किया है। कुछ ऐसा ही नजारा हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
4: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: बांग्ला कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक खेल पत्रिका खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
3: प्रतीक आनंद
2: का नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आज खेलों की बात करें तो निश्चित रूप से आईपीएल के दिलचस्प मुकाबलों की कहानी है, साथ ही बैडमिंटन की भी रिपोर्ट है। बात हम करेंगे रोविंग की भी, बात करेंगे सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भी और साथ ही साथ बैडमिंटन की भी। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल के आज से मुकाबले नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सीएसके का सामना होना है और सीएसके के लिए बहुत कुछ दांव पर होगा जीटी के खिलाफ। सुनते हैं पहले कल के मैच के परिणाम के साथ साथ आज के मैच का पूर्वावलोकन।

कल ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया। मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। वर्षा से प्रभावित इस मैच में टीम का रन रेट 7.35 रहा, जो इस सीजन 20 ओवर पूरे खेलने वाली टीमों में तीसरे सबसे खराब स्कोर रहा। इस मैच में कोलकाता के गेंदबाजों का दबदबा रहा। मैच की शुरुआत बेहद खराब रही। मुंबई पावर प्ले के भीतर ही अपने 4 अहम बल्लेबाजों को खो दिया। रायन रिकल्टन 6 रन बनाकर कैमरन ग्रीन की गेंद पर आउट हुए, जहां मनीष पांडे ने एक शानदार कैच पकड़ा। रोहित शर्मा 15 रन बनाकर सौरभ दुबे का शिकार बने। नमन धीर बिना खाता खोले ग्रीन की गेंद पर आउट हो गए और सूर्य कुमार यादव भी 15 रन बनाकर चलते बने। सूर्य कुमार यादव का इस सीजन बल्लेबाजी औसत 17.5 रहा है, जो उनके आईपीएल करियर में दूसरा सबसे खराब औसत है। इस तरह शुरुआती 6 ओवरों में मुंबई दबाव में आ गई। मध्य क्रम में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने की कोशिश की। मुंबई की सबसे बड़ी साझेदारी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच 49 गेंदों पर 43 रन की रही, लेकिन 5.26 के रन रेट से बनी ये साझेदारी इस सीजन 30 से ज्यादा गेंद खेलने वाली साझेदारियों में दूसरी सबसे धीमी है। अंत के ओवरों में विल जैक्स ने 14 रन और कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 32 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बॉश की यह पारी मुंबई के लिए सबसे तेज रही। बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी की, तो ग्रीन और सौरभ की अगुवाई में केकेआर की उम्दा गेंदबाजी देखने को मिली। कोलकाता के लिए कैमरन ग्रीन ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवरों में 23 रन देकर 2 विकेट लिए और 9 गेंदें डॉट डाली। यह पहली बार है जब ग्रीन ने आईपीएल में एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले। वहीं सौरभ दुबे ने अपने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। स्पिन विभाग में सुनील नरेन ने 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 28 रन दिए। बड़ी ही किफायती गेंदबाजी रही। कार्तिक त्यागी ने भी 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। कोलकाता की अनुशासित गेंदबाजी के सामने मुंबई के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। ग्रीन और सौरभ की शुरुआती सफलता ने मुंबई पर दबाव बनाए रखा, जिससे पूरी टीम 20 ओवर में गति नहीं पकड़ पाई। इसके बाद कोलकाता के बल्लेबाजों ने 148 रन का पीछा करते हुए तेज शुरुआत करने की कोशिश की, मगर 7.1 ओवरों में 54 रन पर 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। फिर मनीष पांडे और रोवमैन पवल के बीच 41 गेंदों में 64 रन की साझेदारी हुई, जिसने केकेआर को मैच में बनाए रखा। अंत में रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई और केकेआर की क्वालिफिकेशंस की उम्मीदों को बनाए रखा।

अब नजर डालते हैं आज के मैच पर। अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। यह दोनों टीमों का प्रतियोगिता का आखिरी मैच होगा। चेन्नई के लिए ये मैच बेहद अहम है। टीम अगर आज हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं गुजरात के पास मौका है मैच जीत कर टॉप टू में फिनिश करने का। पिछले साल जिस टॉप टू फिनिश से वो चूक गए थे। अब तक जीटी और सीएसके के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें जीटी ने 5 मैच जीते हैं, जबकि चेन्नई ने भी 4 मैच जीते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि आज का मैच बेहद रोमांचक होगा। बात करें गुजरात के बल्लेबाजों की तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए 500 से अधिक रन बनाए हैं। दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 13 मैचों में 21 विकेट लिए हैं। वहीं बात करें चेन्नई के लिए, गायकवाड़ का इस आईपीएल में स्ट्राइक रेट 120.68 का रहा है। शुरुआती मैचों में फॉर्म से जूझ रहे चेन्नई के कप्तान को कुछ मैचेस से लय प्राप्त हुई है। गेंदबाजी में भी अंशुल कंबोज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 मैचों में 20 विकेट लिए हैं।

IPL 2026 में एक हिट थ्रिलर फिल्म का सारा एलिमेंट देखने को मिल रहा है। सांसें रोक देने वाले मुकाबले हैं, हर पल बढ़ता रोमांच है, क्लाइमेक्स पर सब कुछ उलट पलट कर देने वाले मुकाबले हैं। सभी टीमों के लिए लीग का एक एक मुकाबला बचा हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी। प्लेऑफ का रोमांच और बढ़ गया है। अभी तक की बात करें तो कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी प्लेऑफ उम्मीदें जिंदा रखी। टीम के अब 13 मैचों में 13 पॉइंट्स हो गए और वह छठे स्थान पर पहुंच गई है। टीम का आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से है। केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मैच जीतना होगा, साथ ही राजस्थान और पंजाब के हारने की भी उम्मीद करनी होगी। अब प्लेऑफ के चौथे स्थान के लिए राजस्थान, पंजाब, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला बना हुआ है। चेन्नई आज गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी और टीम को हर हाल में जीत चाहिए। चेन्नई 13 मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर आ गई है। टीम को कोलकाता की जीत से एक पायदान का नुकसान हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 पॉइंट्स और प्लस 1.065 नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। टीम पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अगर नेट रन रेट में बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो आरसीबी का क्वालिफायर एक खेलना तय है। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद 16-16 पॉइंट्स के साथ और नेट रन रेट के आधार पर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात का आखिरी मुकाबला चेन्नई से है। टीम अगर इस मैच में जीत दर्ज करती है तो 18 पॉइंट्स के साथ क्वालिफायर एक खेल सकती है। वहीं हैदराबाद का सामना बेंगलुरु से होगा। एसआरएच को टॉप टू में जगह बनाने के लिए आरसीबी को बड़े अंतर से हराना पड़ सकता है। राजस्थान रॉयल्स 14 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। टीम का आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। 24 मई को अगर राजस्थान जीतती है तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी और प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर है। टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है। पंजाब को प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत दर्ज करनी ही होगी, साथ ही राजस्थान के हारने की भी उम्मीद करनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स 12 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर खिसक गई है। टीम का नेट रन रेट -0.871 है। दिल्ली को आखिरी मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। मुंबई 8 पॉइंट्स के साथ 9वें जबकि लखनऊ 8 अंक लेकर आखिरी स्थान पर है। मुंबई का आखिरी मैच राजस्थान से जबकि लखनऊ का पंजाब से होगा। हम आपको बता दें कि अभी ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी के सिर पर है, जबकि पर्पल कैप की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जो भारत के अनुभवी गेंदबाज रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं।

0: को निखारने के लिए कोच की बड़ी भूमिका होती है। जब कोच और कोचिंग स्टाफ के बारे में बलराज पवार से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं।
1: जी सर, हमारे कोचिंग स्टाफ के बारे में सबसे जो हमें प्लस पॉइंट है, हमारे पास ये फॉर्म कोच है जो एंथनी पेटरसन है, उनके पास लगभग अपना 30 से प्लस साल का एक्सपीरियंस है जो हमारे बहुत काम आएगा। और हम अभी भी देख रहे हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है हर एक सेशन में, हर एक उसमें। और उन्हीं की गाइडलाइन पे हमारे जो सीनियर कोच है इधर हमारे आर्मी के और साई के कोच है वो ही काम कर रहे हैं, हमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिल रही है कोच के तौर पे। इस हमारे बेग सर को हम मिस करेंगे, लेकिन जो भी हमारे पास उपलब्ध है कोच हम उनसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बंद कोच है हमारे वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं।
0: बलराज पवार से हमने ये भी पूछा, ईमानदारी से बताइए इस बार कितने पदक भारत को रोइंग में मिलने वाले हैं?
1: एशियन गेम्स में 7 इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे बॉयज की टीम से, तो हमें अपने पूरी उम्मीद है कि हम हर एक इवेंट में अपना मेडल लेके आएंगे, और जो हमारे पिछली बार मेडल रह गए थे उनका कलर हम चेंज करेंगे इस बार, हमें इसकी पूरी उम्मीद है।
0: इसी सवाल के जवाब को आगे बढ़ाते हुए बाबूलाल कहते हैं।
2: जी सर, जो पिछली एशियन गेम में जो हमारे 3 ब्रॉन्ज आए थे, 2 सिल्वर आए थे, हम उनको इम्प्रूव करेंगे हम और उनका कलर अच्छा लेके आएंगे।
0: हांगजू 2022 यानी पिछले एशियन गेम्स में डबल स्कल्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरविंद सिंह से हमने खास बातचीत की और उनसे जानना चाहा, जो पिछली बार चूक हुई थी उसकी भरपाई इस बार हो जाएगी, कितने पदक भारत जीतेगा और कहां वर्तमान में भारत की रोइंग खड़ी है, तमाम तरह के सवाल किए। आइए सुनते हैं अरविंद सिंह को।
3: हम 2022 से कंपेयर करें अपने 2026 जो एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर लगता है बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। अगर हम उस टाइमिंग की बात करें 2022 में जो हमारे टाइम आ रहे थे और 2026 में जो टाइम आ रहे हैं, तो लगभग बहुत मतलब फर्क है, 3 से 4 सेकंड का फर्क है, तो 3 से 4 सेकंड में तो बहुत सारे मेडल चेंज हो जाते हैं। पूरी उम्मीद है कि अच्छा मेडल आएंगे आपके, कम से कम हमारे 3 गोल्ड आएंगे सर।
0: 3 गोल्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि पदक पिछली बार बढ़े लेकिन गोल्ड नहीं आए थे, इस बार इतना भरोसा कैसे अरविंद जी?
3: सर हम ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग पहले से मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, और जो हमारी जो टाइमिंग है हम उनसे बहुत मोटिवेट है सर, तो हमें पूरी उम्मीद है टाइमिंग देख के कि हाँ पहले से क्लोज टाइम आ रहे हैं, तो हो सकता है 3 गोल्ड सर पक्का आएंगे।
0: ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कोच आपके किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
3: सर जो शेड्यूल है हमारा, ट्रेनिंग तो ज्यादा हम कर रहे हैं सर, पिछली बार से हम रोइंग में कम से कम अगर हमारी 2022 से कंपेयर करें तो 18 से 20 किलोमीटर होती थी पर डे की, और इस टाइम हम रोइंग कम से कम 35 से 40 किलोमीटर रोइंग कर रहे हैं पर डे। हाँ तो सर हमें पूरी उम्मीद है टाइमिंग देख के पिछले और अब के अच्छे मेडल आएंगे।
0: अगर आपके इंडिविजुअल की बात करूं, जिस तरह से पिछली बार प्रदर्शन था, हालांकि अगर हम सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स में कुछ बहुत अच्छा नहीं निकल गया है, हमारा जो टीम इवेंट में अच्छा था, तो इस बार सिंगल्स में क्या देख रहे हैं?
3: सिंगल्स में सर पिछली बार हमारी 4th पोजीशन थी सिंगल में, अब के शायद मैं खेल रहा हूं अभी तक तो, और मुझे उम्मीद है कम से कम मैं सिल्वर मेडल तक पहुंचूं सर। हाँ पूरी उम्मीद है सर, टाइमिंग बहुत अच्छे आ रहे हैं पहले से कंपेयर करें।
0: भारत में रोइंग वर्तमान सर क्या है, कैसा भारत में इसका भविष्य कैसा लग रहा है, कितने प्लेयर निकल के आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं?
3: थोड़ा सा मतलब फर्क तो है हमारे गेम में और जो गेम है, थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है हमारा गेम इतना, पर अगर पिछले 2 या 3 साल से देखे तो मतलब जैसे एशियन गेम्स में हम खेल गए थे अभी, फिर ओलंपिक में भी बहुत अच्छा किया था, टोक्यो ओलंपिक में भी हमने, तो थोड़ा पॉपुलर हो रहा हमारा गेम, तो लोग बागों को जैसे सिविल में पता चल रहा है कि गेम अच्छी चीज है, गेम क्या है उसके विषय में लोगों को पता चल रहा है, और खिलाड़ी निकल रहे हैं धीरे धीरे सर।
0: एशियन गेम्स 2026 में ओवरऑल कितने पदक भारत जीतेगा?
3: सर हमारे 7 इवेंट जा रहे हैं सर, 7 में से 3 गोल्ड और 4 से 4 सिल्वर दिखाई दे रहे हैं सर मुझे 100%।
0: जैसा कि बलराज पवार ने अपनी बातचीत में बताया कि कोच इस्माइल बेग को वो मिस करेंगे, हालांकि इस्माइल बेग इस वक्त टीम के साथ नहीं है, लेकिन उनसे हमने खास बातचीत की और जानना चाहा भारत का रोइंग स्पोर्ट्स इस वक्त कहां पर है, किस स्थिति में है और एशियन गेम्स को लेकर क्या होप्स हैं। मिलते हैं द्रोणाचार्य अवार्डी कोच इस्माइल बेग से।
4: कई साल से रोइंग काफी बेहतर से प्रदर्शन करते आ रहा है, और एशियन गेम में बेहतर भी किया, पिछले एशियन गेम में भी हमने 5 मेडल जीते थे और पारा में भी 1 सिल्वर मेडल जीता था, ओलंपिक में भी कंटिन्यू सिडनी ओलंपिक से लेकर कंटिन्यू हमने क्वालिफाई भी करते आ रहे हैं, और इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो आने वाले वर्तमान में भी हमारा रोइंग का काफी अच्छा प्रदर्शन होने का बहुत संभावना है।
0: जी आपने तो शुरू से देखा भारत के स्पोर्ट्स को, देखा खासतौर से रोइंग को देखा है, कल बलराज पवार से मेरी बातचीत हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई की थी, तो उन्होंने कहा था हम इस्माइल बेग को मिस करेंगे, आपने क्या गुण सिखाए कि आज भी खिलाड़ी आपको उतना ही मिस करते, उतना ही याद करते हैं?
4: तो पता नहीं कौन सी काबिलियत है हमारे पास है जो हमने जो प्यार मोहब्बत के साथ काम करते हैं इसके साथ है। वो भी मिस करते हैं, हमें भी मिस तो करते हैं।

0: और आने वाले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
1: जैसा कि बलराज पवार कह रहे हैं और अरविंद भी कह रहे हैं, इस बार मेडल की संख्या बढ़ेगी, आपको भी उम्मीद है?
0: दुआ तो कर रहे हैं, बनना चाहिए।
2: इस्माइल बेग दुआ कर रहे हैं कि भारत एशियन गेम्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आए। अब आपको सुनवाते हैं उस खिलाड़ी को जिससे श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में बात की थी, उल्लेख किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रश्मिता साहू की, भारत की उभरती हुई रोइंग खिलाड़ी। उनसे हमने खास बातचीत की और जानना चाहा प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे बातचीत की थी उसके बाद से आपके खेल में कितना बदलाव आया, आपका हौसला कितना बढ़ा है और एशियन गेम्स में क्या होप्स कर रही हैं। सुनते हैं रश्मिता को।
3: बहुत अच्छा लगा था कि मैं करोड़ों लोग के बीच में मेरे किया और बहुत खुशी लगा था। साउथ मूवमेंट का मेरे लिए, मेरे गेम के लिए, मेरे गांव के लिए, परिवार के लिए।
1: तो जब प्रधानमंत्री जी ने आपसे फोन पे बात की उसके बाद आपके खेल में कितना बदलाव आया, आपका हौसला कितना बढ़ा, आपका उत्साह कितना बढ़ा?
3: बहुत ही ज्यादा मेरे को मोटिवेट मिला सर। मैं 10 साल गेम कर रहा था और तो मैंने इंटरनेशनल नहीं खेला था और मैंने उसके बाद इतना प्रैक्टिस और भी मेहनत जितना मेरा कर रही थी और भी ज्यादा मेहनत करके मेरे को इंडिया कैंप में सिलेक्शन मिल गया एशियन गेम्स के लिए। उसके बाद मैंने अभी 18th इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेल लिया, प्रेसिडेंट कप खेला था इंडिया में, हुआ था तेहरी में। उसके बाद एशियन जापान में हुआ था, उसमें मैंने 500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया, सेकंड कॉम्पिटिशन था वो। उसके बाद एशियन चैंपियंस में गया था, उसमें भी 10th पोजिशन में आया है। मैं आशा करती हूँ अभी इंडिया कैंप में फिलहाल हूँ, एशियन गेम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। फाइनल लिस्ट आया नहीं है, आगे मैं चल के इंडिया को मेडल दूँ मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे साथ KSBC हाई परफॉर्मेंस एकेडमी और IKCA और साई जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाह सकता हूँ।
1: जैसे सिलेक्शन होता है एशियन गेम्स में आपको जाना होता है, तो क्या आपको लग रहा है वहाँ पोडियम फिनिश करेंगे? क्योंकि पिछली बार हमने देखा रोइंग में भारत को महिलाओं की श्रेणी में कोई पदक नहीं मिला था।
3: अभी हमको इंडिया को आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एशियन चैंपियनशिप में भी देख आया, वो हम बहुत अच्छे में, हमको और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तभी जाके मेडल पोडियम में हम फिनिश कर सकते हैं। हमारे पीछे तो साई से लेके साडेनी से लेके सबको ही सपोर्ट मिल रहा है।
2: टीम का लक्ष्य साफ है, अब सिर्फ फाइनल तक पहुंचना नहीं बल्कि पोडियम के सबसे ऊंचे स्थान पर तिरंगा लहराना है। अगर हम पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारतीय रोइंग टीम ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति दिखाई है। सबसे पहले बात 2022 एशियन गेम्स की, चीन के हांगझो में भारत ने रोइंग में शानदार 5 पदक जीते थे जिनमें 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे। अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट की जोड़ी ने पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं पुरुषों की 8 सदस्यीय टीम ने भी बेहतर तालमेल दिखाते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। बाबूलाल यादव और लेखराम ने कांस्य पदक जीतकर भारत की सफलता को और मजबूत बनाया। लेकिन भारतीय रोइंग के सफर में 2018 एशियन गेम्स का अध्याय भी बेहद खास रहा। इंडोनेशिया के जकार्ता पालमबाग में भारतीय रोवर्स ने शानदार वापसी करते हुए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते थे। 2018 से 2022 तक का सफर यह बताता है कि भारतीय रोइंग लगातार आगे बढ़ रही है। पहले 1-2 पदक, फिर कई फाइनल, अब गोल्ड की उम्मीद। भारतीय रोइंग टीम की नाव अब नई दिशा में आगे बढ़ चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि 2026 में क्या यह टीम एशिया के पानी पर इतिहास की सबसे बड़ी लहर पैदा कर पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
4: थाईलैंड ओपन में किसी की जीत का जश्न, किसी की हार का गम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कुछ ही घंटे बाद दुनिया के चुनिंदा बैडमिंटन दिग्गज अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिखने मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कोर्ट पर उतर गए। इनमें कई भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ का सफर पहले दौर में समाप्त हो गया, कुछ अगले दौर में पहुंचे। इसी कड़ी में टूर्नामेंट के 3rd दिन के मैचों का परिणाम भारत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में अश्मिता चालिया ने सफलता हासिल की। इस उभरती भारतीय खिलाड़ी ने मेजबान देश की गो जिन वेई को आसानी से 2 गेम में शिकस्त दी। अश्मिता ने 21-13, 21-16 से जीत दर्ज की और अब टूर्नामेंट में भारत की एकमात्र उम्मीद है। इसी वर्ग में एक और युवा खिलाड़ी मालविका बंसोड को हार का सामना करना पड़ा। कड़े मुकाबले में मालविका को 7वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क की लाइन होसबार्क जार्सफेल्ट ने 21-16, 8-21, 15-21 से शिकस्त दी। हम आपको बता दें कि डेनिस खिलाड़ी ने पहले दौर में भी एक भारतीय खिलाड़ी अनमोल खरब को पराजित किया था। देविका सिहाग भी राउंड ऑफ 16 में चीन की शीर्ष रैंकिंग वाली चेन यू फेई से 16-21, 13-21 से मात खा बैठी। उन्होंने कल पहले दौर में मैराथन मैच में दक्षिण कोरिया की पार्क गायुन को 19-21, 21-18, 21-19 से मात दी थी। आज देविका के ऊपर उस लंबे चले मैच की थकान का असर साफ दिख रहा था। हालांकि चीन की टॉप सीडेड खिलाड़ी ने अपने अनुभव का भी पूरा फायदा उठाया। उधर पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन को चीन की जोड़ी लिन जियांग यी और हु के युआन ने 14-21, 15-21 से पराजित किया। मिक्स डबल्स में कानापुरम सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी राउंड ऑफ 16 में दक्षिण कोरिया की जोड़ी से 12-21, 25-27 से पराजित हो गई। हम आपको बता दें कि पुरुष सिंगल्स, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो चुकी है। अब क्वार्टर फाइनल में कल अश्मिता चालिया का मुकाबला उसी लाइन उजमार्क जासवेट से होगा जिन्होंने भारत की दो खिलाड़ियों अनमोल खरब और देविका सिहाग को पहले ही शिकस्त दी है। और अब बात WTT कंटेंडर 2026 लाओस में हो रहा है ये टूर्नामेंट, और वहां पर भारत के लिए आज अच्छी खबर यह है कि मिक्स्ड डबल्स के जो मुकाबले हुए हैं उसमें तीन जोड़ियां भारत की क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मानुषा और दिया चिताले की जोड़ी ने इटली और नाइजीरिया की जोड़ी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मानव ठक्कर और मनिका बत्रा ने नाइजीरियाई जोड़ी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ साथ हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े भी नाइजीरियाई जोड़ी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हालांकि हम अगर बात करते हैं मुदित दानी और अहिका मुखर्जी की तो वो प्री क्वार्टर फाइनल में चिली और नीदरलैंड की जोड़ी से 1-3 से हार गए।
5: अब बात करते हैं चेस की। रोमानिया में चल रहे सुपर चेस क्लासिक टूर्नामेंट अब अपने निर्णायक मोड पर आ चुका है। छठे दौर के बाद भारत के प्रगनंदा रमेश बाबू ने रोमानिया के बोगदान डेनियल डियाक से ड्रॉ खेला छठे दौर के बाद। वहीं गत विजेता आर प्रगनंदा 3.5 अंकों के साथ दूसरे से चौथे स्थान पर बने हुए हैं। अचंभे की बात यह रही कि फीडे कैंडिडेट्स 2026 जीतने वाले उज़्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदरोव, जो डी गुकेश के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनने की दावेदारी पेश करेंगे, अब तक इस प्रतियोगिता में 6 में से 1 भी बाजी नहीं जीत पाए हैं। सातवें दौर में आर प्रगनंदा का मुकाबला यूएसए के फेबियानो करुआना से होगा। अब बात करते हैं हॉकी की। भोपाल के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीमों के बीच खेली गई 4 मैचों की द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज का कल समापन हो गया। सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। इस अंतिम ड्रॉ के साथ सीरीज भी 1-1 से ड्रॉ रही।
4: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर मुझे यानी धर्मेंद्र और
5: प्रतीक आनंद
4: को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
6: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

साप्ताहिक खेल पत्रिका खेल खिलाड़ी अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म गुप्त से, आवाजें उदित नारायण और सुनीता राव की है, बोल है आनंद बख्शी के, धुन बनाई है विजू शाह ने।

ये दिल लगी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर और कुमार सानू की थी, बोल थे समीर के, धुन बनाई थी दिलीप सेन समीर सेन ने। फूल और कांटे इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, आवाज़ें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की हैं।

0: राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
4: अमेरिका एंड इंडिया,
5: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जाँच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

0: मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था, काल बांदा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कर्नाटक कोस्टल एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल स्नो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है उल्ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहाँ येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसे स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग देके उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देके उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
2: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
2: देश के बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये 3 राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें इसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर दिए हुए हैं। देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
2: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हेवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निकल टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को?
2: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, वो उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
2: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहले स्टार्ट हुआ, बहुत सारे राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान, तो

0: हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है। खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए, जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है। लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमको एक्सट्रीम बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसा कि ऑब्जर्वेशन है। दूसरा आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मॉनसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकड़ता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका जानकारी हमने पब्लिक को गवर्नमेंट को सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं, लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुट पार्क और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए।

0: सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैल है उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बताए हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो कि नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान दे के आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सरजमी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीतकार हैं कौसर मुनीर, संगीतकार विशाल खुराना।

एक दीवाने की दीवानियत इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे सचिन उर्मतोष, आवाज़ और संगीत निर्देशन अंकुर आर पाठक का था। ओ रोमियो इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। बोल हैं गुलजार के, धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।

शब्द रचना थी सिद्धार्थ गरिमा की, संगीत निर्देशन श्रेयस पुराणिक का। अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुना फिल्म धड़क 2 का ये गीत।

मिस्टर एंड मिसेज माही इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है कौसर मुनीर ने, धुन बनाई है तनिष्क बागची ने, आवाज जुबिन नौटियाल की।

बन्नी और सागर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का ये गीत। गीतकार थे सागर, संगीतकार हनी बनी। थम्मा फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है मधुवंती बागची ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

ज़रा हटके ज़रा बच के इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाज़ों में। बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के, धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके तहत आइए आज सुनते हैं सितार वादन। कलाकार हैं निशात खान। आइए पहले सुनते हैं राग जोग कौंस में सितार वादन।

राग जो कौंस में अभी आप सुन रहे थे, उस्ताद निशात खान का सितार वादन। आइए अब सुनते हैं सितार पर बजाई धुन मिश्र भैरवी। कलाकार हैं उस्ताद निशात खान।

0: सितार पर बजाई धुन मिश्र भैरवी अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे उस्ताद निशात खान। इसके साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: चार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी